FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56:40 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद सुनिएगा आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी

0: और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश के संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान की ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी आम लोगों के लिए इस महीने की 16 तारीख से खुल जाएगी। लोग 15 सितंबर तक अमृत उद्यान का भ्रमण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, आज का परिश्रम कल का परिणाम तय करता है। ये था आज का चिंतन।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271। छह बजकर 45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। कलाकार हैं गायिका शुभा मुग्दल। सुनिए श्रृंखला की 5वीं कड़ी। प्रस्तुति है कांचन प्रकाश संगीत की। 7 भूले बिसरे गीत हमें राही प्यार के 7:30 पर। 8:15 पर त्रिवेणी। आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का। पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री काजोल पर। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 10:00 आप सुनेंगे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे। अभिनेत्री और निर्देशक तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग मनीषा सिंह का। प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 11:00 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:00

पांच मिनट से सजेगी यादों की महफिल, 1 बजे सुनिए सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे त्रिवेणी, सुनिए आलेख और स्वर है आरती श्रीवास्तव का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। बजकर 30 मिनट पर सदाबहार नगमे, 3 बजे आप सुनेंगे सखी सहेली, 4 बजे पिटारा में आज के मेहमान लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग मनीषा सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम, 7:45 पर इंद्रधनुष में आप सुनेंगे राग अनुराग, 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी चुपके चुपके, लेखन है आर के शर्मा का और निर्देशन है नीलम चोपड़ा का, 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। रात 9 बजे सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, 10 बजे छाया गीत, आलेख और स्वर है मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

प्रसंग है किष्किंधा कांड में बालिवध के बाद सुग्रीव के राज्यारोहण तथा बालिपुत्र अंगद के युवराज घोषित किए जाने के बाद प्रवर्षण पर्वत की गुफा में राम लक्ष्मण प्रवास का। ऋतुचक्र अपनी गति से चल रहा है। वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्ज्वल शिला पर बैठे हुए श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में घुमड़ते बादलों को देख मोरों के झुंड ऐसे नर्तन कर रहे हैं जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। बादल पृथ्वी पर ऐसे झुके आते हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान

आसमान नम्र हो जाते हैं। वर्षा की बूंदों की चोट पर्वत ऐसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सह लेते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहा हो।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 271।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपका स्वागत है और शुभा जी आपका भी स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हमने शुद्ध मल्हार, मेघ मल्हार, मेघ गौड़ मल्हार, मियाँ की मल्हार, जो कि वर्षा ऋतु से संबंधित राग हैं, की आपने चर्चा की और बंदिशें भी सुनाई।
1: जी।
0: लेकिन शुभा जी, मुझे एक सवाल हमेशा मन में ये उमड़ता घुमड़ता रहता है कि ऐसी जो बंदिशें हैं वो क्या सिर्फ मल्हार ही में मिलती हैं, किसी और राग में?
1: जी, बहुत सारी हैं ऐसे अन्य राग।

0: में जिनका वर्षा से ऐसा कोई संबंध नहीं है रागों का, लेकिन जो बंदिशों की जो का जो साहित्य है वो वर्षा से संबंधित ज़रूर मिलता है।
1: जी
0: एक ऐसी बंदिश है जिसे संगीत के बहुत सारे विद्यार्थी उससे परिचित होंगे, राग बिहाग की एक बंदिश है, लट उरिझी सुलझा जा रे बालम। ये बहुत सारे लोग सीखते हैं, और क्योंकि बिहाग ऐसा राग है, एक महाराग है, जिसे शुरुआत में भी सिखाया जाता है, यानी जो सीखना शुरू करता है वो उसके पहले दूसरे साल में आपको बिहाग ज़रूर सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बंदिश से परिचित होंगे।
1: जी
0: मुझे जो एक बात इसमें अलग लगी कि ख्याल के रूप में तो इसे गाया ही जाता है, ख्याल गायक इसे गाते ही हैं, लेकिन मुझे यही साहित्य और यही पद, यानी जो साहित्य है, वो मुझे वैष्णव मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में, जो उत्तर भारत के कृष्ण मंदिर हैं, उनमें आप जानती हैं कि संगीत के बिना सेवा ठाकुर की पूरी नहीं
1: होती नहीं
0: होती।
1: है,
0: राग सेवा
1: ये
0: अवश्य।
1: सनातन परंपरा है,
0: जी बिल्कुल
1: अष्टछाप कवियों ने
0: जी
1: इसका। जी
0: जी और ऐसा साहित्य और ऐसा संगीत मिलता है उसमें जो कि बिल्कुल खजाना सा है। तो उसमें यही साहित्य मुझे मिला, लेकिन उसे तीज के पदों के एक संग्रह में शामिल किया गया था।
1: जी जी
0: तो हम तो जब ख्याल गाते हैं तो एक स्थाई एक अंतरा गाते हैं, लेकिन उस पद में जैसे तीज का पद कहा गया, और वो ठीक भी लगता है क्योंकि तीज का जो त्यौहार है वो वर्षा ऋतु के ही दौरान आता है। और मुझे याद है कि अभी जो एक तीज के समय मेहंदी लगाई जाती है, कन्याएं सुहागिनें
1: जी
0: सब जो हैं सज धज के और मेहंदी लगाती
1: हरी चूड़ियां
0: हैं, हरी
1: पहनती
0: चूड़ियां,
1: हैं।
0: लाल चूड़ियां, मणिहारन बुलाई जाती है चूड़ियां पहनाने के लिए घर की महिलाओं को, और माँ की ओर से साड़ी, श्रृंगार का सामान, ये सब आता है। तो झूला पड़ता है, झूला भी झूला जाता है तीज
1: जी
0: के दौरान। तो ये बिल्कुल, इसका जो साहित्य है वो बिल्कुल उपयुक्त लगता है कि तीज का पद क्यों कहा जाए इसे।
1: शुभा जी, भारतवर्ष में जगह जगह सावन ऋतु, सावन और जो आप ये कह रही हैं त्यौहार, थोड़ा सा फर्क होगा इसको
0: बिल्कुल
1: मनाने की जो पद्धति रीति है उसमें फर्क होगा, लेकिन मनाया तो जाता ही
0: जी
1: है।
0: हाँ, किसी ना किसी रूप में धरती का जो एक की जो उपजाऊ एक उसका एक जी
1: सृजनशीलता
0: बिल्कुल
1: है।
0: उसको नवाजा जाता है, उसको नमन किया जाता है, और प्रार्थना होती है कि ये सदैव ऐसा ही बना रहे।
1: जी
0: तो इस पद में क्या कहा गया, जो नायिका है वो तो हाथ में मेहंदी लगा के बैठी है, दोनों हाथों में मेहंदी लगी है, तो अब संकेत कैसे करे वो नायक को, कैसे उसे अपने पास बुलाए। तो वो कहती है, लट उरझी सुरझाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। वो तो बेबस है, वो तो मजबूर है, अपने दोनों हाथ तो वो लगा ही नहीं सकती है अपने केश पे। तो लट उलझी सुलझा जा रे बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है। फिर जो तीन अंतरे हैं वो इस प्रकार हैं, सिर की साड़ी सरक गई है, जो साड़ी का जो घूंघट है जो सर पे लिया था वो सरक गया है, अपने हाथ उढ़ाए जा बालम, मोरे हाथन मेहंदी लगी है।
1: वाह,
0: फिर दूसरा अंतरा उसके बोल इस प्रकार हैं, भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, शायद हाथ लगा हो तो बिंदी भी गिर गई हो,
1: क्या
0: भाल की बेंदी मोरी गिर जो परी है, हा हा करत लगाए जा बालम।
1: हा हा करत,
0: हाँ मतलब एक बुलाने का तरीका
1: हा
0: है,
1: हा
0: नीलांबर प्रभु गुण ना भूलूं,
1: हाँ
0: बीरी नैक खवाए जा बालम। बीरी यानी पान का बीड़ा, वो भी मुझे अपने हाथ से खिला दो, ऐसा निवेदन है।
1: जी
0: तो ये पद तीज का पद जो कि यदि हम उसे बिहाग में बैठा के आलाप
1: जी
0: इत्यादि के साथ बढ़त के साथ गाएं तो वो ख्याल गायक भी गाते हैं, और मंदिरों में ये तीज के पद के रूप
1: जी
0: में भी सुनने को मिलता है।
1: और भले ही इसमें जैसे उमड़ घुमड़ कर आई घटा और ये सब ना भी हो, फिर भी वर्षा ऋतु के समय, वर्षा काल में इसे मनाया जाता है
0: जी
1: ये
0: बिल्कुल
1: त्योहार।
0: बिल्कुल मनाया जाता
1: तो
0: है।
1: उस समय तो नायिका के हाथों में जब मेहंदी लगी है, और हर जगह हर प्रांत में ये होता है कि सावन में हाथों में मेहंदी तो लगाई जाती है, तो सुनाएंगी आप ये पूरा पद या
0: बिल्कुल
1: क्या मन
0: बिल्कुल
1: है?
0: पूरा पद भी सुनाऊंगी, और ये भी कहूंगी कि हर रचना का जो साहित्य है उसे यूं ही उड़ा नहीं देना चाहिए, उसमें बहुत सारी कहानियां पिरोई हुई आपको मिलेंगी।
1: और हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर सी बनी हुई हैं ये
0: जी
1: चीज़ें, बंदिशें, तो इनको सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत ही उपयुक्त
0: जी
1: होगा।
0: राग बिहाग का चलन कुछ इस प्रकार

0: ये था तीज का पद, तीन अंतरे, बड़े ही सुंदर राग बिहाग में। शुभा जी, आज हम यहीं रुकते हैं, श्रोता मित्रों से भी आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: पतिता फिल्म से आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे अफसाना फिल्म से ये गाना, असद भोपाली के बोल और संगीत हुस्नलाल भगतराम का। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं दिले नादान फिल्म से, सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे आवारा फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

हर सुबह की नई रोशनी एक नया ख्वाब लाती है, सपनों को पूरा करने की एक नई राह दिखाती है। तो इस नई सुबह में, इस नए कार्यक्रम में, जी हाँ, नमस्ते रोहतास में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता का दिन दूर हो सकता है पर कठिन मेहनत से उसका आना अनिवार्य है।

और श्रोताओं, अब आइए 5 अगस्त की महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं नज़र। 2013 में आज ही के दिन भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में संपन्न हुए विश्व कप में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता था। 2019 में आज ही के दिन भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। और 2020 में ही आज की वो तारीख रही जब अयोध्या राम मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और इस ऐतिहासिक मंदिर निर्माण की नींव डाली।

और अब आइए एक नज़र डालते हैं 5 अगस्त को जन्मे सुप्रसिद्ध व्यक्तियों पर। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 1852 में उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रवादी आचार्य प्यारे मोहन का जन्म हुआ। आज ही की वो तारीख रही जब 1890 में चांद पर कदम रखने वाले दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग का जन्म हुआ था। 1901 में आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त को भारत के प्रसिद्ध राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा का जन्म हुआ। 1915 में आज ही के दिन भारत के आधुनिक युग के प्रगतिशील कवि, जी हां, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म हुआ। और 1969 में प्रसिद्ध क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म भी आज ही के दिन हुआ है। 1975 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय चुलबुली अभिनेत्री काजोल का जन्म हुआ। 1987 में एक और प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा का भी जन्म हुआ है। 2001 में भारत की महिला भारतीय पहलवान अंशु मलिक का भी जन्म हुआ। और अब थोड़ी सी जानकारी, 5 अगस्त को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो बता दें आपको कि 1950 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई का निधन हो गया। 2000 में आज ही के दिन भारत के महान क्रिकेटर लाला अमरनाथ का निधन हो गया। भारत के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा का निधन भी 5 अगस्त को 2014 में हुआ। 5 अगस्त 2025 में भारत के अनुभवी राजनेता और राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक का भी निधन हुआ। हम आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो श्रोताओं, ये थी थोड़ी सी जानकारी 5 अगस्त के इतिहास के बारे में। और अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम में एक भक्ति रचना, कुणाल गांजावाला, दीपांशी नगर, पद्मनाभ गायकवाड़, इनके गाए हुए इस भक्ति गीत को हम सुनवा रहे हैं पानीपत फिल्म से।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी का

सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में अब आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर। रोहतास जिले में चेहल्लुम पर कल निकाला गया ताजिया जुलूस, हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। जिले भर में चेहल्लुम पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। जी हाँ, हज़रत इमाम हुसैन की याद में कल मंगलवार को रोहतास ज़िले में चेहल्लुम का पर्व पूरी अकीदत और भाईचारा के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न मोहल्लों से ताजिया निकाले गए, जो तय मार्गों से गुजरने के बाद करबला में पहलगाम किए गए। शोक के इस पर्व पर इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया गया और शहर की विभिन्न मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। शेरगंज, अड्डा रोड, जानी बाजार और चौक बाजार आदि क्षेत्रों में चेहल्लुम को लेकर खासी गहमागहमी रही। सासाराम सदर के नए भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR के रूप में अमर ज्योति ने कल पदभार ग्रहण कर लिया। प्रभारी DCLR सह उप समाहर्ता ओम प्रकाश लाल ने उन्हें विधिवत प्रभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद DCLR अमर ज्योति ने कहा कि आम लोगों से जुड़े राजस्व मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। श्रावण माह और आगामी त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए रोहतास जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने जिले के तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों सासाराम, डेहरी और विक्रमगंज को पत्र जारी कर मिठाई दुकानों, डेयरी प्रतिष्ठानों, होटलों तथा अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठानों की नियमित एवं औचक जाँच कराने का निर्देश दिया है। DM रोहतास ने कहा है कि श्रावण माह और त्योहारों के दौरान मावा, खोया, घी, पनीर, मिठाई और अन्य दुग्ध उत्पादों की मांग अचानक से बढ़ जाती है, जिससे मिलावट की आशंका भी अधिक रहती है। इसे देखते हुए सभी संबंधित विभागों को विशेष सतर्कता बरतने का DM रोहतास ने निर्देश दिया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2026-27 के तहत रोहतास जिले के पात्र छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर निर्धारित की गई है। जिले के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों, सरकारी एवं निजी ITI, डिप्लोमा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, BEd और DLed कॉलेज सहित संबंधित शिक्षण संस्थानों को पात्र विद्यार्थियों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन करवाने का निर्देश दिया गया है।

बरसात के मौसम में रोहतास जिले के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष नज़र रखी जाएगी। शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना निदेशक विनायक मिश्रा ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को विद्यालयों और केंद्रीय कृत रसोई घरों का लगातार अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि भोजन की गुणवत्ता में कमी व लापरवाही के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में दोषियों के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सावन माह के अवसर पर रोहतास जिले के सभी प्रखंडों में और विक्रमगंज डिहरी

स्थित शिवालयों में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के उपरांत मंदिर समिति की ओर से और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण भी किया जाता है।

कैमूर जिले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देश पर मंदिर के संरक्षण और समग्र विकास की दिशा में कल पहल शुरू हुई। मां मुंजेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार और इको टूरिज्म विकास को ले उच्च स्तरीय टीम ने कल किया निरीक्षण। जी हां, कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत पवरा पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक और प्राचीन मां मुंजेश्वरी मंदिर के वैज्ञानिक जीर्णोद्धार तथा आसपास के क्षेत्र में इको टूरिज्म के समग्र विकास के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय समिति ने कल मंगलवार को मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। हम आपको बता दें कि यह निरीक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दिशा निर्देशों एवं वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप मंदिर के संरक्षण और समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस उच्च स्तरीय टीम में विकास आयुक्त बिहार मिहिर कुमार सिंह, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के सचिव प्रणव कुमार, कैमूर के जिला पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त दिव्या शक्ति, वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधि शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान पुरातत्व एवं विरासत संरक्षण के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर मोहम्मद के, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रजत सान्याल तथा बिहार विरासत विकास समिति के प्रोफेसर अनिल कुमार भी उपस्थित रहे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 सत्र के लिए विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में नए नामांकन और पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 16 अगस्त कर दी है। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी इग्नू के आधिकारिक पोर्टल ignu.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक ने जानकारी देकर बताया कि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों, कार्यरत पेशेवरों तथा अन्य छात्रों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने नामांकन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब नामांकन की अंतिम तिथि 16 अगस्त कर दिया गया है। कैमूर जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि ग्राम पंचायत के क्षेत्रीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज की जाएगी। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग एवं 6ठे राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि की प्रशासनिक स्वीकृति लेकर शीघ्र व्यय करने के निर्देश भी डीएम कैमूर ने दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत विवाह मंडप के लिए उपयुक्त जमीन का चयन कर शीघ्र प्रतिवेदन भेजने, निर्माणाधीन जिला पंचायत संसाधन केंद्रों को तेजी से पूरा करने, त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ते का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने तथा आरटीपीएस काउंटरों को संचालित करने का भी डीएम कैमूर ने निर्देश दिया।

और श्रोताओं, कल 4 अगस्त को समाहरणालय रोहतास स्थित डीआरडीए सभागार में जिला पदाधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र रोहतास जी, हाँ डीएम रोहतास, ने बैठक की। बैठक में शांति समिति के सदस्यों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में कल चेहल्लुम पर्व के दौरान विधि व्यवस्था, सुरक्षा, साफ सफाई, संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी तथा प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। चेहल्लुम पर्व के अवसर पर आज भी ताजिया जुलूस निकालने का सिलसिला जारी है। जिला पदाधिकारी रोहतास ने नगर निगम सासाराम को शहर में स्वच्छता, पेयजल

जल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन के माध्यम से लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें तथा सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने से बचें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस अथवा प्रशासन को दें तथा चेहल्लुम पर्व को शांति, सद्भाव और आपसी सहयोग के साथ संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। और चलते चलते एक और रोहतास की जो ये गतिविधि है इस पर डालते हैं नज़र। जी हाँ, कल 4 अगस्त को जिला पदाधिकारी रोहतास द्वारा घनकी जामुन चौक से 4 लेन के अंदर से होते हुए बूढ़न नहर चौक तक सड़क निर्माण को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, सड़क निर्माण विभाग के अभियंता सहित संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी रोहतास ने सड़क मार्ग की भौगोलिक स्थिति, संभावित रूट निर्माण की व्यावहारिकता तथा स्थानीय आवश्यकताओं का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं अभियंताओं से सड़क निर्माण के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी रोहतास ने सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों व अभियंताओं को इस परियोजना का विस्तृत प्राक्कलन जल्द तैयार करने का निर्देश दिया। तो श्रोताओं, ये थी स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। और अब कार्यक्रम में सुनिए ये बेहद ही प्यारा गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल आवाज़ में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दिया एस टी बर्मन ने और फिल्म है आराधना।

और श्रोताओं, इस गीत के बाद अब आइए समाचार पत्रों की सुर्खियों पर डालते हैं नज़र। प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर सभी ने एक प्रमुखता से खबर को छापा है कि बिहार की प्राचीन विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। मां मुंडेश्वरी, बोधगया, सुल्तानगंज व मंदार बनेंगे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल विशेषज्ञों के साथ की

बैठक। इस बैठक में प्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर के मोहम्मद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भी बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही इस बैठक में विकास आयुक्त मिहिर कुमार और कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार भी शामिल रहे। और दूसरी खबर अब हम आपको बता दें, जी हाँ, दैनिक जागरण लिखता है कि बिहार और बंगाल के पूर्व राज्यपाल डी वाई पाटिल का निधन हो गया। त्रिपुरा, बिहार और बंगाल के पूर्व राज्यपाल ज्ञानदेव यशवंत पाटिल का कल मंगलवार को पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। महाराष्ट्र के प्रमुख शिक्षाविद भी थे डी वाई पाटिल। हिंदुस्तान अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि नीट पीजी दाखिला व्यवस्था की ऑडिट कराएगी अब सरकार। साथ ही 18 वर्ष की उम्र में बन सकेंगे अब कंपनी के बॉस। और चलते चलते आपको खेल संबंधित गतिविधियों के बारे में भी बता दें, तो आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने के बाद अब नीरज लॉस एंड डायमंड लीग में भाग लेंगे। कल खेल मंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं को नई दिल्ली में सम्मानित किया। क्रिकेट से अपडेट की बात करें तो भारतीय टीम कोलंबो पहुंच चुकी है और आगामी टेस्ट सीरीज तथा WTC मुकाबलों की तैयारी में जुट गई है। चलते चलते आइए मौसम के बारे में लेते हैं थोड़ी सी जानकारी। तो आज रोहतास जिले में मौसम मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहेगा और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम से मुझे इजाज़त दीजिए। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: नमस्ते रोहतास, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को

0: सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख

0: रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है।
1: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। JPSC परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्थल पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: मेडिकल परामर्श समिति नीट UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
3: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी। हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो

0: मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को एसओपी बनाए आरबीआई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल न बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
3: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शाबाश मीठू की आवाज़ में अमित त्रिवेदी का लिखा हुआ एक देशभक्ति गीत। इस देशभक्ति गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत अमित त्रिवेदी का। फिल्म है हिंदुस्तान मेरी जान।

शाबाश मिठू कैलाश खेर और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में 8:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपके कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहला ये पत्र जो हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में वो आया है कलेर बिहार के श्रोताओं का। इसे लिखने वाले श्रोता हैं मोहम्मद आसिफ खान, निखत प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, अजफर हामिद, मशकूर आलम और शमा प्रवीण। इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है सुहाग फिल्म के गीत के लिए। जी हाँ, गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं तेरी रब ने बना दी जोड़ी। और आप हैं कुवात से शेख जफर हसन और राकेश रोशन। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं सुहाग फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। आनंद पक्षी के बोलों को संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

तेरी रब ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, सुहाग फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। और अब कार्यक्रम में अगला गीत दूसरा आदमी फिल्म से, और इस गीत के लिए हमें ख़त लिखकर भेजा है जय हिंद तेंदुआ नवी नगर से गिरेंद्र सिंह, अजीत सिंह, सुजीत और टुनटुन ने। तो ज़रूर आपकी पसंद हम पूरी करने वाले हैं। आप हैं आदर्श नगर मलोच पंजाब के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंजी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हैं वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श बाबू। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार के हमारे श्रोता हैं अक्रम हुसैन प्रिंस, वसीम अक्रम, आरिज वसीम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, बच्चू सैक, इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, नदीम अक्रम, अमन अक्रम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख। नूर महल मह

सोल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान, हमजा और मुजम्मिल। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी जी। हाँ, तीन तीन दिग्गजों की आवाज़ एक साथ इस गीत में। दूसरा आदमी फिल्म से मजरूह के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू के स्वर में मदन पाल का लिखा हुआ एक गीत आशिकी फिल्म से। संगीत था मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का, और इस गीत को पसंद किया था हमारे राजनगर कांति निकेतन के श्रोताओं ने। जी हाँ, आप सब हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, माला मिश्रा, रेणु मिश्रा गोल्डी, मास्टर रुद्र गुप्ता। राजनगर गांधी चौक से आप हैं रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता गुप्ता, मेनका गुप्ता, पलक, पंखुरी, माधवी, साध्वी, हैप्पी, रिद्धि, गुनगुन, चुलबुल, रेणु, ज्योति जी, शालू, दीप शिखा, अर्चना और साक्षी मिश्रा। और आप सबकी ये जो फरमाइश थी आशिकी फिल्म के गीत दिल का आलम के लिए, तो उसे हमने अभी अभी पूरा किया। और अब लेते हैं कार्यक्रम में ये अंतिम गीत, जी हाँ, आपकी कसम फिल्म से। और इसके लिए हमें पत्र लिखकर भेजा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय ने। तुबिहार नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश रॉय, प्रीति रॉय, नवनीत रॉय। ब्रह्मपुरा मनीगाछी से अच्छेलाल रॉय, पानू देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। और आप हैं तेलंगाना भोंगीर विद्यानगर के मोहम्मद बुरहानुद्दीन, प्रीति सुरेश, मृत्यालु बाबू, फरजान लल्ला, फरहान लल्ला, अजीज़ भाई और अब्दुल बाबा अनजाना। तो चलिए, सारे हमारे जो श्रोता हैं आप सब मिलकर सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ को आपकी कसम फिल्म में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार RD बर्मन।

हमारे नए श्रोताओं के लिए हम कार्यक्रम का पता बता देते हैं। तो हमारा पता है, कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा, केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115।

और अब इसी के साथ मुझे यहीं इजाज़त दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार।

0: बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोगों से पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, जिससे पशु पालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
1: इसके लिए वर्षा ऋतु के दौरान कुछ अपनाने योग्य बातों का ध्यान रखें। बारिश से पहले पशुओं की पशुशाला के छत की मरम्मत कर दें ताकि पानी न टपके। पशुशाला की खिड़कियों को खुली रखें तथा गर्मी और उमस से बचने के लिए पंखों का प्रयोग करें। साफ सफाई का ध्यान रखें और पानी एकत्र न होने दें।
0: नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। जानवरों को ज्यादा शारीरिक थकावट न होने दें और बार बार धूप में न लाएं।
1: कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। दाने का भंडारण नमी रहित जगह पे करें। संक्रामक रोगों के विरुद्ध अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लें।
2: डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं। पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है। अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं।
3: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें। समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों मां मुंडेश्वरी, महाबोधि मंदिर समेत अन्य पर्यटन केंद्रों को मिलेगा विश्व स्तरीय स्वरूप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दिए निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसिलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू। और मौसम विभाग ने आज अररिया, सुपौल, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद समेत 10 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, सुल्तानगंज, मंदार और विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप के संरक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्खनन और समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: सरकार का उद्देश्य इन धरोहरों के ऐतिहासिक महत्व को नए सिरे से स्थापित करते हुए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनाना है। इस संबंध में देश के वरिष्ठ पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों को बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में बिना खुदाई के भूमि के अंदर संभावित पुरातात्विक संरचनाओं और अवशेषों की वैज्ञानिक पहचान के निर्देश दिए गए। वहीं मां मुंडेश्वरी मंदिर परिसर के आसपास स्थित हजारों भग्नावशेषों के वैज्ञानिक पुनर्स्थापन और कैमूर क्षेत्र को हेरिटेज तथा इको टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में शामिल केसरिया स्तूप के शेष हिस्से के वैज्ञानिक उत्खनन के निर्देश भी दिए। अब तक इस विशाल स्तूप का केवल आंशिक उत्खनन हुआ है। साथ ही सुल्तानगंज और मंदार क्षेत्र के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों के संरक्षण, समेकन और समग्र विकास पर भी बैठक में विशेष बल दिया गया। समाचार कक्ष से सविता पारी।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि अग्निवीरों के अनुशासन और कौशल का उपयोग आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों में किया जा सकता है। राज्यपाल बिहार लोक भवन में अग्निवीरों की सेवा अवधि पूर्ण होने के बाद उनके सम्मानजनक पुनर्वास और सार्थक समायोजन के संबंध में आयोजित एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सेना और राज्य सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में अग्निवीरों के लिए स्थायी और सम्मानजनक अवसरों के सृजन पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और इसके प्रचार प्रसार का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि वापस लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसिलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
2: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही

0: विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायिक सुनवाई की प्रक्रिया न्याय श्रुति की जल्द शुरुआत की जाएगी। अभियोजन निदेशक सुधांशु कुमार चौबे ने बताया कि इसके लिए वीडियो ट्रायल सफल रहा है और पटना उच्च न्यायालय ने गो लाइव सर्टिफिकेट सक्षम बोर्ड को उपलब्ध करा दिया है। श्री चौबे ने बताया कि गृह सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सीसीटीएनएस की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रणाली को लागू करने में सभी व्यवहारिक पहलुओं को पर चर्चा की गई। पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि समान स्थिति वाले कर्मियों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकल पीठ ने तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जिला अनुकंपा समिति द्वारा अनुशंसा में हुई प्रशासनिक देरी का खमियाजा मृत कर्मियों के आश्रित नहीं भुगतेंगे। न्यायालय ने तीन माह के भीतर सभी मामलों पर नए सिरे से निर्णय लेकर अनुकंपा पर बहाल कर्मियों को नियमित वेतनमान सहित सभी परिणामी लाभ देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित हो रहे भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से ये समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया और सुपौल जिले में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, किशनगंज और पश्चिम चंपारण समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया में सबसे अधिक 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं बारिश के दौरान कटिहार जिले के पोठिया ओपी थाना क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण आज 7वें दिन भी साफ सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है। हड़ताल को लेकर नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने सफाई कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। वार्ता में सफाई कर्मियों को उनकी मांगों को लेकर आज सकारात्मक जवाब देने की बात कही गई है। इधर पटना की मेयर सीता साहू

आज शाम सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में हड़ताल समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बीच स्थानीय प्रशासन की ओर से साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज सीवान के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं ने बताया है कि कल उनका पटना के पालीगंज में आयोजित संकल्प सभा में भाग लेने का कार्यक्रम है। दौरे के दौरान पार्टी महासचिव राज्य के विभिन्न जिलों में पेपर लीक के मामलों को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान घायल छात्रों से मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रदेश में बकरी पालन को रोजगार के रूप में स्थापित करने के लिए महिलाओं को प्रोडक्शन ग्रुप से जोड़ा जाएगा। जीविका योजना की समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने कहा कि इसके लिए पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद और कैमूर समेत कई जिलों में प्रोडक्शन ग्रुप बनाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि गाय और भैंस के दूध की तरह बकरी के दूध की सहज उपलब्धता के लिए इसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नाबार्ड और पशुपालन विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। कृषि विभाग ने पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के मामले में 6 उर्वरक प्रतिष्ठानों, एक बीज विक्रेता और कीटनाशी प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिले के अलग अलग स्थानों में विभिन्न उर्वरक और बीज प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम तथा उड़न दस्ता दल की छापेमारी के दौरान यह कार्रवाई की गई। इस दौरान कई अन्य दुकानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इधर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मोतिहारी में पदस्थापित जिला कृषि पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से पटना स्थित मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया है। उनके स्थान पर मृणाल शास्त्री को जिला कृषि पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और अब खेल की खबरें। बिहार क्रिकेट संघ बीसीए ने आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के तहत राजगीर में होने वाले मैचों की तैयारी शुरू कर दी है। बीसीए के अधिकारियों ने कल राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का दौरा किया और यहां उपलब्ध सुविधाओं तथा मैदान की स्थिति का आकलन किया। संघ के सचिव जियाउल आरफीन ने बताया कि ग्राउंड और पिच की गुणवत्ता को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। राज्य स्तरीय बहु खेल प्रतियोगिता का आयोजन 5 से 12 सितंबर तक पटना और राजगीर में किया जाएगा। खेल विभाग और बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस खेल महाकुंभ में प्रदेश भर के 5,000 से अधिक महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित 52वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबले में पटना ने सीतामढ़ी को 58-33 से हरा दिया। अन्य मैचों में बक्सर ने मधेपुरा को 42-13 और बेगूसराय ने सीवान को 34-30 से पराजित किया। मुंगेर मंडल में मंडल कारा में बंद एक कैदी संजय साव की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतक जिले के असरगंज का रहने वाला था और भूमि विवाद के मामले में न्यायिक हिरासत में था। जहानाबाद जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं विषय पर राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा की ओर से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में विरासतों के विकास की कार्ययोजना शीघ्र बनेगी। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, तेजी से रास्ता बदल रही है सूबे की नदियां, गंगा दक्षिण तो कोसी पश्चिम की ओर खिसक रही। दैनिक जागरण ने नासरीगंज पानापुर स्टीमर सेवा की शुरुआत पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, निशुल्क स्टीमर फेरी से किसानों और दूध उत्पादों को मिलेगा लाभ। दैनिक भास्कर लिखता है, कानपुर आगरा की तरह मुजफ्फरपुर लेदर हब बनेगा, 85 एकड़ में बन रहे 2 लेदर पार्क, 12,000 को रोजगार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों मां मुंडेश्वरी, महाबोधि मंदिर समेत अन्य पर्यटन केंद्रों को मिलेगा विश्व स्तरीय स्वरूप। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दिए निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसिलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू। और मौसम विभाग ने आज अररिया, सुपौल, अरवल, औरंगाबाद

एटा, जहानाबाद समेत 10 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आसमान में बिजली के चमकने, गरजने, कड़कने के समय यदि आप खुले में हो तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊंचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें। समूह में न खड़े हों। रेडियो और टीवी पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में अब आइए एक नज़र डालते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका में हिंदी फिल्म संगीत। 9:30 पर हम लेकर आएंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार का प्रसारण। सुनिएगा दिल्ली से हिंदी समाचार सुबह 10:00। 10:05 पर हम लेकर आएंगे सासाराम केंद्र से साप्ताहिक कार्यक्रम श्रम संसार का प्रसारण। लोक माधुरी कार्यक्रम में आनंद लेंगे आप भोजपुरी एल्बम लोकगीत का 10:30 पर, और रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग हम सुनवाएंगे 10:45 पर। आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण आज आप सुनेंगे पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 12:00 तक, अपराह्न 12:05 से अपराह्न 2:00 तक, और अपराह्न 2:30 से शाम 5:00 तक। रात 9:30 पर भी हम लेकर आएंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण रात 10:00 तक। अपराह्न 12:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाने वाला हिंदी समाचार। 12:05 तक आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। दोपहर 2:00 प्रादेशिक समाचार, 2:05 पर इलाकाई खबरें, और 2:10 पर रोजगार सूचना आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। दोपहर 2:15 पर हम सुनवाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे शाम 5:05 तक। हमारे सासाराम केंद्र से उद्घोषणा एवं कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे शाम 5:05 से शाम 5:10

मिनट तक। 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम वंदन में भक्ति संगीत। शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे महिला बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण। इस कार्यक्रम में बहनों से बातें के अंतर्गत आप आज सुनेंगे दहेज एक अपराध और क्रांति का महीना अगस्त, इस विषय पर खास चर्चा। शाम 6:00 का समय होगा भोजपुरी लोकगीत का। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से रिले किए जाने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन को। शाम 6:10 पर हम लेकर आएंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गांव घर। 6:40 पर आप सुनेंगे सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस आप सुनेंगे शाम 7:00 से 7:15 तक। गुड इवनिंग रोहतास, ये सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम आप सुनेंगे आज 7:15 पर। 7:25 से सुनिएगा आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। 7:50 पर हम लेकर आएंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात 8:00 से 8:15 तक आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी सासाराम से हेलो मनपसंद का शेष भाग आप सुनेंगे 8:15 से रात 8:45 तक। रोजाना की तरह आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या हम रिले करेंगे 8:45 से। रात 9:00 सुर सौरभ कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन, गायन होगा गिरिजा देवी का। 9:30 पर आकाशवाणी विविध भारती से सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण समापन तक आप सुनेंगे 10:00 से रात 10:15 तक आकाशवाणी दिल्ली से। 10:15 पर सुनिएगा रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग। 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे आपको हिंदी फिल्म संगीत। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान हम लेकर हाजिर होंगे 10:55 पर। रात 11:00 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत मालिका में कुछ हिंदी फिल्मी गीत।

0: आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में ये बेहद ही खूबसूरत कव्वाली अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल ही तो है से। साहिर के बोल थे, रोशन का संगीत था। तो श्रोताओं, अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि गीत मालिका कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ फिल्मी कव्वालियों को। और जब कव्वाली की बात चली है तो अल्ताफ राजा का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, एक समय था 1997 का जब अल्ताफ राजा की गाई हुई कव्वाली हम सभी के दिलों पर राज करती थी। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज़ में ये कव्वाली जो दर्द भरी शायरी से भी रूबरू है, और इसे लिखा है अरुण भैरव ने, संगीत अल्ताफ राजा का।
1: प्यार मोहब्बत के किस्से, प्यार मोहब्बत के किस्से बेकार हुए, जब देखा तो दिल के टुकड़े हजार हुए।

अल्ताफ राजा की आवाज़ में ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे कमबख्त इश्क इस फिल्म से। और अब कार्यक्रम में अगला हम आपको कव्वाली सुनाने जा रहे हैं बादशाहो फिल्म से। जी हाँ, इसे गाया है नुसरत फ़तेह।

राहत फतेह अली खान की आवाज़ में अभी आपने सुना दबंग फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा फैज अनवर ने और संगीत था साजिद वाजिद का। और इसी के साथ गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहां से आप थोड़ी ही देर में सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अया

में अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूं मैं,
2: जल्दी है क्या?
1: घर के जिया,
2: वो क्यों भला?
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूं मैं,
2: जल्दी है क्या?
1: घर के जिया,
2: वो क्यों भला?
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नोरे ओलिया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त

0: शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में अविकसित देशों की आकांक्षाओं को आकार देने वाला बहुपक्षवाद समय की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने 17 देशों से आए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधियों से बातचीत की। ये प्रतिनिधि अध्ययन भ्रमण पर भारत आए हैं। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों के साथ प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, शांति सुरक्षा, विकास साझेदारी और आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को अवैध लेन देन के लिए किसी और के खातों का इस्तेमाल और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। सरकार ने सोशल मीडिया पर में आ रहे उन दावों का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को मुफ्त विद्युत साइकिल देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी और डिजिटली जोड़ तोड़ है। प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। पीआईबी ने लोगों से ऐसे संदिग्ध दावों की सरकार को सूचना देने को कहा है। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 दिसंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमेरिका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप हिंदी समाचार सुन रहे थे, इसे हम अपने आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम श्रम संसार।
2: नमस्कार श्रोताओं, श्रम संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त चंदा। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, श्रम संसार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम उन मेहनत कश लोगों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनकी मेहनत लगन को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं एक भूंजा वाले की दुकान पर, जहां चना, मक्का, मुरमुरा और अन्य अनाज भूनकर लोगों तक स्वाद और पोषण पहुंचाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे होती है इस काम की शुरुआत और इसमें किन किन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपना नाम बताइए।
3: हमारा नाम टूना पड़ेगा।
2: आप कौन सा व्यवसाय करते हैं?
3: भूंजा मतलब बेचते हैं, सासाराम डिपो में नए का।
2: अच्छा, भूंजे के आइटम में क्या क्या भूंजा बनाते हैं?
3: भूंजा में सब परमल, पापड़ी, ये सब चना, बादाम, मुरी, सब लाई हुई सब रहता है।
2: अच्छा, तो बताइए कि आप अपना दुकान कितने से कितने बजे तक चलाते हैं?
3: दुकान 10 से 10 चलाते हैं, 10 बजे से लेकर सुबह 10 सांझ तक।
2: यानी कि सुबह 10 बजे से आप यहाँ आकर के रात के 10 बजे तक अपना व्यवसाय करते हैं। तो सुना श्रोताओं, आपने कहा जाए तो ये एक डबल ड्यूटी से कम नहीं, वाकई में ये बहुत कड़ी मेहनत का काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका घर कहाँ है?
3: घर

0: पड़ेगा, मंगज टूर है
1: ये, काफी दूर है शायद।
0: हाँ हिंदू है,
1: यानी कि उतना दूर से आकर के आप अपना व्यवसाय के लिए यहाँ तक सफर करके आप रात के 10 बजे तक करते हैं।
0: हाँ मतलब अपने मतलब 10 बजे से यहाँ पर मतलब अपना काम करते हैं।
1: अपने व्यवसाय की वजह से अपना घर बार छोड़कर आज इन्हें दूसरी जगह किराए के मकान में लेकर रहना पड़ रहा है। अच्छा तो घर आप कैसे जाते हैं इतनी रात में?
0: घर यहाँ पर मतलब हमारा रूम है।
1: आपके बच्चे कितने हैं?
0: हमारा बच्चा 2 लड़का है 1 लड़की है।
1: तो इस व्यवसाय से आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई भरण पोषण सब हो जाता है?
0: अरे अभी तो मतलब हो नहीं जाता है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे डिपो बन जाएगा तब।
1: यानी कि आप मतलब धैर्य है आपके अंदर कि आगे आप और भी अधिक मुनाफा कमाएंगे?
0: हाँ।
1: अपने इस छोटे से व्यवसाय से ये काफी संतुष्ट है और होना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि मन की आत्मसंतुष्टि का होना ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए कि इस व्यवसाय को खड़ा करने के लिए आप कोई सरकारी योजना का लाभ लिए या फिर आपने ऐसे ही खोला?
0: हम अपने से मतलब मजदूरी कर खोले हैं।
1: अच्छा तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकार उद्यमी योजना भी शुरुआत की है, आप चाहे तो उस योजना के माध्यम से अपना आप लाभ ले सकते हैं और सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, आप अपना रोजगार कर सकते हैं।
0: रोज अपना यही से पेट पाल लेते हैं, मतलब 200-300-400 रुपए जो बच जाता है।
1: यानी कि इस रोजगार से आप खुश है, संतुष्ट है?
0: हाँ संतुष्ट है।
1: अच्छा अपने इस छोटे से व्यवसाय से ही काफी बड़ी उम्मीदें हैं इनकी, और उम्मीदें इनकी साकार हो, आगे ये बढ़े अपने संघर्ष के द्वारा, यही हमारी आशा है। रेडियो पर गाने वाने भी सुनते हैं?
0: सुनते हैं मतलब रेडियो लगाकर।
1: तो अपनी पसंद का कोई गीत बताइए, इस कार्यक्रम में आपकी पसंद की फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे।
0: भक्ति गाना।
1: आइए इनकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, आज हम एक और मेहनत कस इंसान के पास पहुंचे हैं। वे एक मकई यानी कि भुट्टा बेचने वाले दुकानदार के पास हम पहुंचे हैं। बारिश हो या गर्मी, सड़क किनारे या बाजार में खड़े होकर ये अपने परिश्रम से लोगों तक ताजा और स्वादिष्ट मकई पहुंचाते हैं। लेकिन इस काम के पीछे कितनी मेहनत संघर्ष छिपा है, आइए जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि यह व्यवसाय उनके जीवन को किस तरह आगे बढ़ा रहा है। इस रोजगार में काफी कड़ी मेहनत होती है। अंगीठियों, लकड़ी का कोक यानी कि जली हुई लकड़ियों को ठंडा करके तैयार किया जाता है और फिर इसे जलाया जाता है, या कोयले पर आग को सुलगाकर मकई को पकाया जाता है, तब जाकर इसकी खुशबू और स्वाद हम तक

0: पहुंचती है।
1: सबसे पहले श्रोताओं को आप अपना नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम विकास कुमार।
1: आप कौन सा रोजगार करते हैं?
2: यही मक्का वक्का बेचते हैं।
1: अच्छा, तो ये बताइए कि आप जो अपना ये व्यवसाय कर रहे हैं तो कितने से कितने बजे तक आप अपना दुकान चलाते हैं?
2: 10 से 5-6 बजे तक।
1: मतलब सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक आप अपना यहाँ ठेला लगाते हैं?
2: जी।
1: तो ये बताइए कि आप ठेला तो आदमी बोलता है कि चलती फिरती दुकान है।
2: हाँ, चलती फिरती दुकान है।
1: तो आप एक जगह यहीं अस्थाई रहते हैं कि कहीं और भी जाते हैं?
2: हाँ, अस्थाई रहते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपके इस रोजगार से आपका काम चल जाता है या कोई और भी रोजगार करते हैं?
2: नहीं, इससे चलने वाला नहीं है।
1: अच्छा, ये बताइए कि आपके बाल बच्चे कितने हैं?
2: हमारे बाल बच्चे करीब 6 से 7 बच्चे हैं।
1: इस रोजगार से आपके परिवार के बच्चों का पढ़ाई लिखाई भरण पोषण हो जाता है?
2: हाँ, इतना ही मेंटेनेंस कर लेते हैं।
1: अच्छा, बताइए, इस रोजगार के अलावा आप मतलब खेती बाड़ी वगैरह भी करते हैं?
2: जी, नहीं करते हैं।
1: अच्छा, आपका घर कहाँ है?
2: जी, यही है, ग्राम बनरसिया है।
1: ये बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
2: मेरा पढ़ाई लिखाई बीए है।
1: तो बीए करके आपने आगे कुछ करने का नहीं सोचा?
2: सोचे पर, लेकिन घर की स्थिति देखते हुए हमको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, इसी को वजह अपने पढ़ाई छोड़ दी।
1: यानी कि मतलब घर की आर्थिक तंगी की वजह से आपको पढ़ाई छोड़ करके अपना रोजगार संभालना पड़ा?
2: जी, मेरा आर्थिक स्थिति दयनीय था, इसलिए हमको पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ा परिवार को देखते हुए।
1: तो आप तो चाहे तो मतलब काम के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई आप आगे जारी रख भी सकते हैं?
2: मेंटेन नहीं ना हो पा रहा है,
1: यानी कि समय का अभाव के चलते आप अपनी आगे की पढ़ाई को रोक के रखे हुए हैं।
2: जी, जी,
1: लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाकर बड़ा कीजिए।
2: बच्चे को तो प्रयास करते हैं, अभी तो स्कूल में विदा करते हैं पढ़ने के लिए।
1: बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों को आगे हम पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं।
2: जी, सोच रहे हैं।
1: चलिए, अच्छा, रेडियो पर गाने वाने भी सुनते हैं?
2: जी, बोलिए, सुनते हैं।
1: तो अपनी पसंद का कोई गीत बताइए, आपकी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे।
2: देशभक्ति गीत।
1: तो आइए देशभक्ति गीत इनकी पसंद का सुनते हैं।

मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा।

0: हम अपने श्रमिक का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ श्रम संसार में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए श्रमिक, एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। इसी तरह हम अब आगे भी आपको मेहनत कश लोगों की प्रेरणादायक कहानियों से रूबरू कराएंगे। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हमें इस पते पर लिख भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम श्रम संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड नंबर 821115। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त चंदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर एवं संकलन चंदा देवी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: संदेश से पहले आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम श्रम संसार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में, कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं शारदा सिन्हा के स्वर से। इन्हीं के संगीत निर्देशन में इस पारंपरिक लोकगीत को हमने लिया है एल्बम परदेशिया बलमुआ से।

मदन रॉय की आवाज़ में अभी आपने ये सुना पारंपरिक निर्गुण गीत, जिसे संगीतबद्ध किया भरत शर्मा व्यास ने। लोकमाधुरी कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए एक बार फिर भरत शर्मा व्यास की आवाज़। पांडे नगीना के बोल, संगीत भरत शर्मा व्यास का है और एल्बम है आधी आधी रतिया की।

भरत शर्मा व्यास के गाए हुए इसी भोजपुरी एल्बम लोकगीत के साथ ही हमारा आज का लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:45 हो रहे हैं। रसधार कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। सबसे पहले सुनवाते हैं आपको अक्षरा सिंह और रोशन सिंह की आवाज़ में छोटू यादव का लिखा हुआ एक भोजपुरी एल्बम सॉन्ग, जिसकी धुन बनाई है रोशन सिंह ने और एल्बम है तोह के पावे खातिर।

अक्षरा सिंह और रोशन सिंह की युगल आवाज में अभी आप सुन रहे थे तोह के पावे खातिर, इस एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग। और अब लीजिए सुनिए अरविंद अकेला कल्लू को पगली दीवानी महाकाल के इस एल्बम में। विजय चौहान का लिखा हुआ एल्बम सॉन्ग है, संगीत है प्रियांशु सिंह का।

अभी आप सुन रहे थे रितेश पांडे और प्रियंका सिंह को बरसेला सावनवा। इस एल्बम में आरआर पंकज के बोल थे, विक्की का संगीत था। और अब रसधार कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए राहुल रौनक की आवाज़ में चले लू झमका के। जी हाँ, इस एल्बम का ये एल्बम सॉन्ग, इसे लिखा शिवधर जोगरी ने है और संगीत है संजय रावत का।

राहुल रौनक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये एल्बम सॉन्ग। और अब भोजपुरी एल्बम सॉन्ग का कार्यक्रम रसधार यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण, जिसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले करेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।

0: रंग तरंग।
1: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने संत मीराबाई का ये भक्ति पद सुना। संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: बहादुर शाह जफर का कलाम अभी आपने सुना। गायिका थी रूना लैला और संगीत पंडित गुलाम कादिर का था।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए अब सुनते हैं यूसुफ आजाद कव्वाल और उनकी हमनवा की गाई ये कव्वाली। इसे तविश महमूद ने लिखा और धुन बनाई निसार ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में एक गजल, शायर सबा अफगानी और संगीत इकबाल का।

0: किशोरी अमोनकर की आवाज में अभी आपने उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी सुनी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
0: शोभा गुर्टू की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर, शंभू और कव्वाल की आवाज़ों में हज़रत अमीर खुसरो का ये कलाम। ये एक सूफ़ी कव्वाली थी जो हज़रत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शीद यानी अपने गुरु हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लिए लिखी, और इस कव्वाली में भी अपने पीर, अपने संत को पाने की खुशी और उनके प्रेम के रंग का वर्णन कर रहे थे। संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
3: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अभिनेत्री काजोल और जेनेलिया डिसूजा का जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम इन दोनों अभिनेत्रियों को देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने वो गीत चुने हैं जो काजोल और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की फिल्मों के हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीत।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: लता मंगेशकर और कुमार सानू, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये झुकी झुकी पलकें, ये गोरी गोरी बाहें।

अनु मलिक की संगीत निर्देशन में अभी आपने देव कोहली का लिखा ये गीत सुना। आवाजें कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की, फिल्म का नाम था बाजीगर।

0: तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
0: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इसे समीर ने लिखा है और तर्ज जतिन ललित की है।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम। बोल समीर के हैं और धुन जतिन ललित की है।

अभी आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। अगला गीत जतिन ललित की संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का लिखा हुआ, युगल स्वर सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम है फना।

0: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम् एक जय घोष। वंदे मातरम् एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है।
3: जी हाँ, अब आप सुनने वाले हैं आशा भोंसले और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। गीतकार समीर हैं और संगीतकार जतिन ललित हैं।
4: अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोंसले और उदित नारायण को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना, आवाज रूना की, संगीत दिया है ए आर रहमान ने और गीत लिखा है अब्बास ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। फिल्म का नाम है मस्ती, आवाजी शान और स्नेहा पंत की। इसे समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: मस्ती फिल्म का दो गाना अभी आपने शान और स्नेहा पंत की आवाजों में सुना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
2: तुम आ गए
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज भीख लेते हैं सावन में। कैसे हैं आप लोग बताइए, पहले ले रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम उसी सावन के नाम हम करते हैं जिसका हम आनंद ले रहे हैं, या हमारे कुछ श्रोता लोग जिनके शहर में बरसात नहीं है वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई सावन के इस महीने में हमारे श्रोता कैसे हैं, जरा बताएंगे। आप सभी जानते हैं ना कि सावन आते ही जैसे हवा का मिजाज बदल जाता है, यानी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पेड़ों की हरियाली, रिमझिम बारिश की बूंदें और ठंडी ठंडी हवाएं मन को सुकून से भर देती हैं। और हम सभी कहते हैं कि भाई ये जो मौसम है खास तौर से सिर्फ प्रकृति को ही नहीं हमारे दिलों को भी हरा भरा कर देता है, है ना? आप भी महसूस करते हैं ना ये सब? तो चलिए आज सुरीला सफर में हम सावन की बूंदों का एहसास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बताइएगा इस सुरीला सफर में आज हमारे साथ चलने के लिए आप लोग तैयार हैं भी कि नहीं। भाई देखिए, सावन का महीना है, बरसात का मौसम है, हो सकता है कहीं कहीं हमें गर्मी का ऐसा महसूस हो, गर्मी महसूस हो, तो हमें परेशान नहीं होना है। सब मिलकर इस हरियाली का, इस सावन का, इस उल्लास का, इस प्रेम का, इस मिलन का, इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, ठीक है? तो आज की इबारत आप सभी ने पढ़ ली है, जो फेसबुक श्रोता हैं हमारे, फेसबुक से जुड़े हैं उन्होंने पढ़ ली है, लेकिन जो फेसबुक फ्रेंड नहीं है हमारे उनको हम बता दें, आज हमने आपके लिए इबारत रची है ये लिखकर कि आदरणीय श्रोताओं, संगीत प्रेमियों और सम्मानित हमारे नए श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। भारत की ऋतुओं में यदि किसी ऋतु का सबसे अधिक इंतजार किया जाता है तो वो है सावन। हाँ, और ये केवल वर्षा का मौसम नहीं बल्कि हरियाली का, उल्लास का, प्रेम का, मिलन का, विरह का और प्रकृति की आराधना का, शिव की आराधना का उत्सव माना जाता है। जब धरती पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो मानो प्रकृति स्वयं गीत गाने लगती है। झूले पड़ते हैं, पपीहा पुकारता है, मोर नाच उठते हैं और मन, हमारा मन गीत संगीत से भर जाता है। बस इन्हीं भावों को हमारे फिल्मी संगीत ने अनगिनत मधुर गीतों में अमर कर दिया है। तो आज का ये संगीतमय कार्यक्रम उन्हीं सदाबहार गीतों को समर्पित है जिन्होंने सावन की हर अनुभूति को सुरों में पिरोया है। ये थी हमारी आज की इबारत, और इस इबारत को पढ़ने के बाद हमारे श्रोताओं ने इतनी खूबसूरत इबारत अपने अपने शब्दों में हमारे सामने रखी है जिसे हम पढ़ेंगे इस गीत के बाद। आयो रे, आयो रे। महेंद्र कपूर और साथी, फिल्म का नाम बंधन, इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन। तो सावन में भीगा जाए, सुरीला सफर शुरू हो गया है। सावधान।

जी हाँ, सावन आ गया है और ये गीत तो महेंद्र कपूर और साथियों ने फिल्म बंधन के लिए गाया था। इंदिवर के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई सावन आ गया है और हम इससे बेखबर कैसे हो सकते हैं? देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने सावन की बौछारों से भीग गए हैं। कुछ श्रोता तो लिख रहे हैं कि हालांकि उनके शहर में अभी बरसात नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रमों के जरिए महसूस करेंगे कि सावन की कुछ फुहारें उनके भीतर महसूस हो। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश में फिर एक बार सावन के भीगे मौसम की बात है तो गानों से जरूर तरबतर हो जाएंगे। सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि धरती और आकाश के मिलन का महाउत्सव, ये चातक की प्रतीक्षा, कृषक की आशा और विरहियों की व्याकुलता का सघन मेघ है। जब ग्रीष्म की तपन से झुलसी वसुधा पर स्वाति की बूंदें गिरती हैं, तब मिट्टी से सौंधी महक उठती है। ये महक प्रकृति के नव श्रृंगार की पहली घोषणा है, इसलिए ये हृदय का राग है, मिलन का बंधन है, मानवीय भावनाओं के चरमोत्कर्ष का काल है और सावन एक शाश्वत अनुभूति है। बहुत सुंदर भाव आपने अपनी इबारत में भेजा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन के इस महीने में सुरीले सफर की खूबसूरत इबारत का, सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि हमारे मन का सबसे कोमल एहसास है। सावन की फुहारों में प्रेम का संदेश है, झूलों की पींगों में बचपन की हंसी है, मोर के नृत्य में प्रकृति का उल्लास है और पपीहे की पुकार में विरह की मधुर टीस भी है। फिल्मी गीतों में भी सावन कभी मिलन का बहाना बनकर आया तो कभी बिछड़ने वालों की आंखों में बरसता रहा। सुनेंगे इस संगीत में सावन में सुरीले सफर में उन सदाबहार गीतों को जिन्होंने बरसात की हर बूंद को सुरों का मोती बना दिया। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज इबारत आती थी मगर ऐसी न थी, चेतक पक्षी को जैसे

पवन की एक बूंद का इंतजार रहता है, हमें भी सुरीला सफर की बागडोर कौन संभाल रहा है उस पोस्ट का इंतजार रहता है। क्या बात है, सावन आए और विविध भारती पर इससे जुड़े गीत न बजे ऐसा संभव ही नहीं। सावन केवल एक ऋतु नहीं, आशा, विश्वास, मिलन, विरह और प्रतीक्षा का प्रतीक है। हमारे लिए सावन आए न आए, जिया जब झूमे सावन है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ सुरीला सफर को और सुरीला बना देती है। क्या बात है, सावन सिर्फ बारिश की बूंद नहीं लाता बल्कि मन में एक नई ताजगी भर देता है। जब सूखी धरती पर पहली बूंद पड़ती है तो सौंधी महक से हर कोना महक उठता है। पेड़ पर पड़े झूले, बादलों की गड़गड़ाहट और हरी भरी पत्तियां सब मिलकर जीवन में नए रंग भर देते हैं। आपने भी कुछ गीत चुने हैं जिनका जिक्र आपने किया है, तो देखना यह है कि आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या आपके गीत से मिलते हैं वो गीत। तो जब सुरीला सफर पर निकल ही चुके हैं, सावन आ ही गया है, तो चलिए फिर क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। बताइए आपके आसपास कहीं झूला टंगा है किसी पेड़ की टहनी पर या घर में? बताइएगा क्या आपने झूला झूला इन दिनों? फटाफट लिखिएगा अपना एहसास, कितनी ऊंची पींगे बढ़ाई आपने ये भी बताइएगा।

लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बहू बेगम। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि धमाकेदार शुरुआत से लगता है आज सावन में ही भादो आ जाएगा। क्या बात है, यानी आप भी आनंदित हो रहे हैं और सावन में भीग गए हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीत बहुत ही प्यारे होने वाले हैं क्योंकि सावन जो आ गया है विविध भारती के आंगन में। भाई, आपके आंगन में भी तो सावन आ गया है और सब श्रोता मिलकर मंदाकिनी जी के साथ मस्ती से आनंद लेने वाले हैं। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बंधन फिल्म के महेंद्र कपूर जी की ये जो आवाज थी शानदार गाने से सावन की शुरुआत सुरीला सफर कार्यक्रम में हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली बार ये गीत सुनने को मिला है, सुरीला सफर में बज रहा है या बहुत लंबे से समय के बाद ही इस गीत को बजाया गया है, धन्यवाद देते हैं आप। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की सुरीली यात्रा अत्यंत सुखदायी लग रही है क्योंकि आज की विशेष कड़ी आपके द्वारा सावन में वर्षा की ठंडी ठंडी फुहार जैसे कर्ण प्रिय गीतों से सजाई गई है। भाई, जब सावन का मौका है और सुरीला सफर है, हम और आप साथ हैं, मिलकर इस यात्रा पर निकले हैं, तो यकीनन जो सफर है वो सुरीला होना लाजिमी है, है ना। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना आकाश का मन हुआ कि चलो धरती से मिले, हाथ बढ़ाकर उसके स्पर्श की पावन अनुभूति का आनंद मैं भी लूं, अपने लंबे लंबे हाथ पानी की धार के रूप में फैलाएं और अंततः स्पर्श कर ही लिया, बस फिर क्या था, माँ तो माँ ही होती है। खुश हो हरा भरा श्रृंगार करके, अच्छा श्रृंगार करके झूमने गाने लगी और तब से वे दोनों हर साल मिलते हैं और इस मिलन के उत्सव को उनके साथ हम सभी झूम झूम कर मनाते हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बारिश रूपी झड़ी लगने वाली है, गीतों की बूंदों के रस में डूबे हुए स्नेहिल मंदाकिनी जी और सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। ये सच है कि ऋतु में सावन खूब भाता है, बचपना हो, युवा हो या 50 से ऊपर, बारिश में भीगने का अपना आनंद होता है। हाँ, पर मन के भाव हर उम्र में अलग अलग हो सकते हैं, पर बारिश रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए, मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन, बहुत अच्छे लगते हैं गीत सुनना। बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे बचपना हो, चाहे युवावस्था हो या 50 के पार का हमारा मन हो, ये जो बारिश है, ये जो सावन है, ये जो मौसम है, हमें हर उम्र में उतना ही उल्लासित रखता है जितना हम हर वक्त रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी भी मौसम को किन अर्थों में लेते हैं। अच्छा, तो हमने आपसे पूछा था कि झूले पड़ गए हैं, आपके घर आंगन में भी झूले लग गए होंगे, किसी पेड़ की शाखा पर झूले टंग गए होंगे, क्या आपने झूले झूले हैं। अभी ढूंढते हैं आपके जवाब क्या आए। ये बताइएगा कि आपके शहर में सावन बरसा के नहीं, फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे कि आपके शहर में बरसात हुई कि नहीं, हुई तो कितनी हुई, कब से हुई और आपने सावन का जो ये आनंद है लिया या नहीं। ये आपका मन सूखा रेगिस्तान है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सुरीला सफर में आज हमारी कोशिश यही है कि हम भीग जाएं तन मन से। यह आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आशीर्वाद, गुलजार साहब के बोल, वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो ये दर्शाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें और नकारात्मकता आती ही हैं। भगवान शिव द्वारा इस विष को अपने गले में रोकना ये सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी बातें भी सहनी पड़ती हैं। जो इंसान अपमान और आलोचना को झेल कर भी शांत रहता है, वही असल में महान बनता है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके शहर में बरसा है पानी सावन बरसा कि नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी सावन नहीं आया, उत्तर पूर्व भारत में गए सोमवार के आसपास सावन शुरू हो गया है, पर पश्चिम में सावन महीना देर से आता है। इन्होंने लिखा है, अरे आपने हमारा नाम बदल दिया, मीनाक्षी जी। बड़ा सुंदर नाम रख दिया आपने हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन हमारे तीन तहसील में बारिश नहीं हुई है, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और जामनगर में बारिश नहीं हुई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत चिंता हो रही है। बाकी गर्मी तो कम है, मौसम बहुत सुहावना है, चारों ओर हरियाली, तालाब, जंगल से घिरा हुआ शहर है हमारा। अगर अच्छा पानी गिरता है तो शिमला मसूरी का मजा आता है। क्या बात है, हम बिल्कुल गुजारिश करते हैं भगवान से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के शहर में पानी बरसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले महीने से मैं बारिश की गीत सुनकर थक गई थी, पर हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही ही, पर पिछले सोमवार से हमारे शहर में रिमझिम सावन बरस रहा है। आज भी सुबह से एकदम बिल्कुल फुहार हो रही है और बहुत बढ़िया हरियाला मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आपको। आप लिखती हैं कि भाई विविध भारती स्टूडियो में भी सावन आ गया है। बिल्कुल, यहाँ तो सावन आ गया है स्टूडियो में, और सुरीला सफ़र में भी तो हम निकल पड़े हैं ना, जहाँ सावन की बौछारें हमें भीगो रही हैं। भीगे हैं ना आप, बताइए मुझे, भीगे हैं कि नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि कहा जाता है कि सावन मास में ही अच्छाई, तो हमने आपका विचार पढ़ दिया था, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं सलिल चौधरी का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। अच्छा बताइएगा, हमारे श्रोता ने कहा आपके दो सवालों का क्या हुआ। नहीं, आज हम खूब सारी बातें करने

0: हैं खूब सारे सवाल आपसे करने वाले हैं, सीधे साधे प्यारे से, जिनका जवाब आप इस सफर में चलते चलाते दे देंगे, है ना? बताइएगा आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है? बारिश, ठंडी हवा, चाय या किसी अपने का साथ?
1: जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
0: हमारे बहुत सारे श्रोता खेत खलियान में बैठकर ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, बताइएगा कैसा लग रहा है आपको वहाँ बैठकर।

हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपसे थोड़े से नाराज हैं, आप आजकल बहुत दिनों बाद आती हैं। वैसे तो हमने सोचा आज हम सुरीला सफर नहीं सुनेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे, उसे करना बहुत जरूरी था। पर अब लगता है कि आपको हम सुनेंगे, और जब सावन की बातें हैं तो हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दिल ने धीरे से कहा, हो जाओ शामिल, देखो ना सबने कितने प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, तुम भी लगी हो इन सब में। बस फिर क्या था, हम लिखने लगे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस तरह से इतना काम होते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और हमारे साथ इस सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि सावन हर साल आता है, मगर हर बार कुछ नया छोड़ जाता है। कभी भीगी मिट्टी की खुशबू में कोई पुरानी याद, कभी झूले की पींग में बचपन, कभी पपीहे की पुकार में किसी का इंतजार, पेड़ों पर उतरती हरियाली जैसे धरती ने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली हो और बादल आसमान की पेशानी पर ठहरी कोई खामोश दुआ बन गया हो। शायद इसलिए हमारे फिल्मी गीतों ने सावन को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया है। हर धुन में कहीं रिमझिम की बूंद है, कहीं मोर के पंखों की थिरकन, कहीं विरह की भीगी सांस, तो कहीं मिलन की मुस्कान। सावन दरअसल मौसम नहीं, यादों का भीगावा पन्ना है, जिसे जिंदगी हर बरस फिर से खोलकर पढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी इबारत आपने लिखी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत ऋतुओं की विविधता का देश है, लेकिन जो आत्मीयता, रसमयता और भावुकता सावन के महीने में छिपी है वो अद्वितीय है। सावन केवल वक्त का एक महीना नहीं है, ये भारतीय जनमानस के लिए प्रेम, विरह, हरियाली और आस्था का एक जीवंत उत्सव है। सावन आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लेती है। सावन रस का महीना है, चाहे वो पानी का रस हो, संगीत का रस हो, प्रेम का रस हो या फिर भक्ति का रस हो। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना उल्लास, उमंग, खुशी और प्रकृति को भी खुशनुमा बना देता है। मोर नाचने लगते हैं, कोयल की कूक गूंजने लगती है, पानी की बूंदें धरती पर पड़ती है, सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और हरियाला सावन ढोल बजाता है।

आता है सावन का महीना और इस तरह से हम सावन के महीने को जीते हैं। तो हमारे श्रोता लगातार लिख रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब भेज रहे हैं कि नहीं। भाई आज तो बिल्कुल सीधे साधे सवाल आपसे किए जा रहे हैं ताकि सुरीला सफर में कहीं रुक के हमें दिमाग पर ज्यादा जोर न देना पड़े कि आज जो हमने पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। तो हमने आपसे सीधा साधा सवाल किया था कि आपके शहर में सावन बरसा या नहीं, आपने इसका जवाब दिया है। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर खेत खलिहान में या आपके आसपास झूले लगे कि नहीं, आपने झूला झूला कि नहीं, इसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है। वहीं अब हम इस सुरीला सफर में आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। मतलब सावन बरसता है तो बारिश का मजा लेते हैं, ठंडी हवाओं का, या अदरक की चाय का, या किसी अपने के साथ उस सावन का मजा लिया जाता है, या कई लोग चाय की टपरी की ओर भी चले जाते हैं जहाँ हमें कुल्हड़ की चाय मिलती है। याद है आपको वो समय जब आप चाय की टपरी पर जाकर कुल्हड़ की चाय पिया करते थे? याद करिए उन दिनों को और लिख भेजिए कम से कम शब्दों में ये अपनी बात जो आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है। यह आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम है कौन है अपना। बीडी मिश्रा का लिखा गीत है और एसएन त्रिपाठी का संगीत है। बहुत कम बजता है गीत

हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन मास का आगमन हर दिल में एक नई उमंग जगाता है, इसलिए सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वयं भगवान शिव को भी ये महीना अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय प्रकृति का कण कण उनकी कृपा से जीवंत हो उठता है। इस पावन मास में बेटियां अपने मायके लौटती हैं, घर आंगन में झूले सजते हैं, सावन के मेले लगते हैं और चारों ओर मखमली हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं को खुशियों के हरे रंग से सराबोर कर लिया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय लोक जीवन में सावन का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सावन केवल बाहरी वातावरण को ही शीतल नहीं करता,

बल्कि इंसान की भीतर छिपी संवेदनाओं को भी जगा देता है। कवियों और साहित्यकारों ने सावन पर अनगिनत रचनाएं लिखी। फिल्मी गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत के राग मेघ मल्हार तक सावन हर कलाकार की प्रेरणा रहा है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए शब्दों में सावन की भावना जीवंत हो उठी है। सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऐसा हम समझते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना आ गया, जीना नहीं आता था लेकिन सावन का महीना आया। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। और श्रोता लिखते हैं कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। आपने पूछा था कि आप सावन को किस तरह से बिता रहे हैं, उसका जवाब दिया है इन्होंने कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। आपने लिखा है कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। मेरे शहर में सावन की झड़ी लगी हुई है और मौसम काफ़ी रूमानी हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पुणे शहर में आषाढ़ की घनघोर बरसात के साथ अब सावन वाली धूप बारिश की आंख मिचोली दिखाई दे रही है। हरी भरी प्रसन्न सृष्टि के साथ हमारा तन मन भी प्रफुल्लित हो गया है, बहुत सुंदर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो बालपन वाले झूले कहाँ मिलते हैं मंदाकिनी जी, जो पेड़ों पर लगे रहते थे अब तो पार्क में झूले होते हैं। अच्छा, आज भी जब आप गाँवों में जाते हैं ना तो वहाँ पर आपको पेड़ों पर झूले टंगे हुए मिलेंगे, है ना। गाँवों में ढाणियों में जाकर देखिए, वहाँ खेतों में खलिहानों में पेड़ों के आसपास झूले लगते हैं और छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां घूंघट अपने में वो अपनी पूरे पारंपरिक पोशाक में होती हैं मतलब, और झूला झूलती भी आपको मिल सकती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए आज का सुरीला सफ़र तो आपने सावन के नाम कर दिया है, सुन रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना भारतीय जनमानस के प्राणों में बसता है। तपती गर्मी से व्याकुल धरती जब वर्षा की पहली फुहार से तृप्त होती है तो चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। ये समय केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ मखमली हरी चादर बिछ जाती है। बागों में सखियों के खिलखिलाते चेहरों के साथ पेड़ों पर झूले सजते हैं और आकाश में काले बादलों को देख पपीहे कितान और मोरों का नृत्य तेज हो जाता है। सावन का हर दिन लोकगीतों, त्योहारों और महादेव की भक्ति के रंग में डूबा रहता है, जो मानवीय संवेदनाओं, विरह और मिलन के भावों को जीवंत कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये सुरीला सफर आपके साथ हम चल रहे हैं और सावन के गीतों का आनंद लेंगे। सावन का महीना ऐसा महीना होता है जहाँ देखो हरियाली हरियाली होती है। इस महीने में अपने आप ही मन खुश रहता है और उस सफ़र पर हम और हमारी कैप्टन मंदाकिनी जी हमारे साथ होंगी। नहीं भाई, हम सब मिलकर, हम सभी मित्रगण जो हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, सब मिलकर इस सुरीला सफ़र का आनंद आज उठा रहे हैं और आप इस सुरीला सफ़र में हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है।

जी, तो जब बात चल रही है सावन की, तो जब बादल खुलकर बरसते हैं तो कैसा लगता है? तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आनंद की वर्षा कर रही है ना? और कभी कभी सावन की इस भीड़ में मन अकेला भी तो हो जाता है, पर हम तो सुरीला सफर के इस मौके पर निकल पड़े हैं। हमारे अंदर कहीं अकेलापन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अपने अनकहे दर्द को कहना चाहते हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि सुरीला सफर की इस यात्रा में हमारे साथ आ जाइए और अपनी तन्हाई को दूर करिए इस गीत के साथ।

उषा खन्ना का संगीत था और गौहर कानपुरी की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था दो खिलाड़ी। लगता है हमारे श्रोताओं को जो है पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। इसीलिए तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि आपके लिए सावन का सबसे रुमानी एहसास क्या है। आप लिखते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। चलिए हम पढ़ते हैं आपके इन जज्बातों को। आप लिखते हैं, पहली बूंदों को अदरक वाली चाय, गर्म पकौड़े और सुरीले सावन गीतों की सुनते हुए अपने मनमीत के साथ मजा लेना ही बढ़िया एहसास लगता है। क्या खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले मधुर सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरेस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सब पत्नी हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत में हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई ये आपके शहर में पानी बरसा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है। बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना। सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना।

सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक, काली मिर्च और इलायची की शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, आहा, हमारा भी मन कर गया है। मजा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पति देव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मजा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कटती हुई ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच प्याज, आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों की बाइट, मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई, आपकी चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते, आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ खाई जाए। अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज की नाव बनाई? हाँ, बचपन में तो जरूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज की नाव को तैराया है। कितना मजा आता था ना घर आंगन में, जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए और कागज की नाव उस पे चलाए करते थे और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली है और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताज़ा हो जाती है? कम से कम शब्दों में बताना है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे लिए सावन की रिमझिम फुहारें, खिड़कियों पर आती ठंडी हवा की लपटें लपटें अरे आपने तो एक अलग ही शब्द इस्तेमाल कर लिया। हाथों में अदरक इलायची वाली कड़क चाय का गर्म कप और बैकग्राउंड में बजते हुए सदाबहार रुमानी गाने, ये किसी जन्नत के एहसास से कम नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। और जब कोई संगीत प्रेमी इस तरह की कल्पना करता है या इस रोमानियत से जीता है तो उसकी ज़िंदगी क्या कहने। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे नागपुर वाले अपार्टमेंट के टेरेस पर मैंने झूला रखा है और शाम को उस पर बैठकर झूलते हुए हरियाली देखता हूँ और ठंडी हवा का आनंद उठाता हूँ, बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन में दोस्ती यारों के साथ चाय की दुकान पर मिलाप बढ़ जाता है और वार्तालाप और हंसी मजाक से समय बिताना कुछ अलग ही मजा देता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने कहा है कि सुबह से दीदी बनारस में बारिश हो रही है, मेरा फेवरेट आनंद लेने की जगह वही होती है, बारिश में बस कुल्हड़ वाली सौंधी खुशबूदार चाय पीता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर में बारिश काफ़ी कम हुई है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। एक श्रोता कहते हैं कि फिलहाल तो हमारे जबलपुर में बारिश नहीं हो रही है, गर्मी तपन भी है, ना ही ऐसा कोई बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, सिर्फ विविध भारती का सहारा है जो हमें ठंडी ठंडी फुहार वाले गीत सुना रहा है, जब बारिश होगी तो पकौड़े और अदरक वाली चाय मिलेगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में अपनी व्यस्तता बढ़ जाती है क्योंकि भोले भंडारी को खुश भी करना है, घर के ही मंदिर में शिव जी को जलाभिषेक करना, बेलपत्र और फूलों से पूजा करना दैनिक गतिविधियों का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। साथ ही सोमवार को फलाहार वाला व्रत रखकर तन और मन को डिटॉक्स भी करना होता है। हाथों को हरी चूड़ियों और मेहंदी से सजाना भी सावन के महीने की विशेषता है। उस पर से बारिश की ठंडी फुहारें आसपास के वातावरण को और खुशनुमा बना देती है, बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के शानदार गीत, आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम, बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है। पहले सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है। वाह, अब तो ना मायके से कोई आता है ना ही कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है। यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है, जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूँ कि अभी सावन की सुंदर छटा चलती रहे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है, बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश, चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुँच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में, इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं का चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया, कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं, और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी, अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है, और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाज़त देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफ़र से। तो हम लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।

ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो घड़ी में दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करते हुए उसे 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा है।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की पटना प्रदेश मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य बैठक में मौजूद रहे। बैठक में हार के कारणों, बूथ स्तर के प्रदर्शन और आगामी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया। प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की 7 दिनों से चल रही हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। हड़ताल को लेकर नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने सफाई कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। वार्ता में सफाई कर्मियों को उनकी मांगों को लेकर आज सकारात्मक जवाब देने की बात कही गई है। इधर पटना की मेयर सीता साहू ने आज शाम सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में हड़ताल समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर
2: इधर।
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में सबसे अधिक 135 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया जिले के पनमनखी में 119 और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में 118.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, खगड़िया, दरभंगा, पटना, समस्तीपुर और सहरसा समेत आसपास के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पश्चिम चंपारण जिले की मलदहिया पंचायत के पंचायत सचिव शंकर प्रसाद को 15,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से नल का जल योजना के विपत्र भुगतान के एवज में घूस ले रहा था। अररिया के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग के आरोप में कुमारी थानाध्यक्ष राजू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शेखपुरा जिले की मिशन थाना पुलिस ने छिनतई करने वाले गिरोह की 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो शरह में कोई तब्दीली नहीं करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मुल्क के इक्तिसादी ग्रोथ को मुस्तहकम मुतालबात की हिमायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ इक्तिसादी निज़ाम बना हुआ है। जनाब मल्होत्रा ने कहा कि जारी माली साल की अप्रैल ता जून से माही में मुल्क के इक्तिसादी निज़ाम का मुजाहरा उम्मीद से बेहतर रहा है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में आज रियासती काबीना की मीटिंग मुनक़िद होगी। मीटिंग में कई अहम तजावीज़ पर मुहर लगने का इम्कान है। बांकीपुर असम्बली ज़िमनी इंतखाब में हुई शिकस्त के जायज़ा के लिए आज बीजेपी की पटना रियासती दफ्तर में आला सतही मीटिंग हुई। वज़ीर आला सम्राट चौधरी, पार्टी रियासती सदर संजय सरोगी समेत रियासती काबीना के कई अरकान मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग में शिकस्त की वजूहात, बूथ सतह के मुजाहरा और आइंदा पॉलिसी के पेश नज़र तफसीली गुफ्तगु की गई। साथ ही तंजीम को मजीद मुस्तहकम करने और कारकुनान से राबता बढ़ाने पर जोर दिया गया। रियासत के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सफाई मुलाजमीन और ड्राइवरों की 7 दिनों से चल रही हड़ताल के सबब सफाई निज़ाम पूरी तरह से मुतासिर हुआ है। हड़ताल के पेश नज़र महकमा शहरी तरक्यात और रहाइश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विनय कुमार ने सफाई मुलाजमीन के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की। गुफ्तगू में सफाई मुलाजमीन को उनके मुतालबात के मद्देनज़र आज मुस्बत जवाब देने की बात कही गई है। इधर पटना की मेयर सीता साहू ने आज शाम एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में हड़ताल समेत दीगर निकात पर गौर किया जाएगा। आकाशवाणी पटना से नशर होने वाले भोजपुरी खबरों के बुलेटिन के नशरिया में तब्दीली की गई है। 7 अगस्त से इस खबर की बुलेटिन शाम 6:05 की जगह शाम 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी खबरों के बुलेटिन का नशरिया आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से लगातार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर काफ़ी बारिश हुई है। मधुबनी ज़िला के बेनीपट्टी में सबसे ज़्यादा 135 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्णिया ज़िला के बनमंखी में 119 और भागलपुर ज़िला के सुल्तानगंज में 118.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। महकमा ने आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, खगड़िया, दरभंगा, पटना, समस्तीपुर और सहरसा समेत आसपास के अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मगरबी चंपारण जिला के मलदहिया के पंचायत सेक्रेटरी शंकर प्रसाद को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलाजिम शिकायत पुनिंदा से नल जल मंसूबा के बिल की अदायगी के एवज रिश्वत ले रहा था। अररिया के SP जितेंद्र कुमार ने डिसिप्लिन शिकनी और ओहदा के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में कुआरी थाना इंचार्ज राजू कुमार को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया है। शेखपुरा ज़िला की मिशन थाना पुलिस ने रहजनी करने वाले गिरोह की 2 खवातीन रुकन को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस ने बिल्डर भूषण कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बिल्डर पर जमीन दिलाने के नाम पर तकरीबन 27 लाख रुपए जालसाजी का इल्ज़ाम है। समस्तीपुर ज़िला के पटौरी थाना हलका से पुलिस ने तकरीबन 12 लाख रुपए मालियत के हीरोइन के साथ 3 स्मगलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार स्मगलरों में एक खातून भी शामिल है। उर्दू डायरेक्टरेट महकमा काबीना सेक्रेटरीट बिहार पटना के ज़ेरे एहतमाम आज शीन मुजफ्फरपुरी यादगारी तकरीब का इनाकात किया गया, जिसकी सदारत मारूफ फिक्शन निगार शफी मशहदी ने की। इस मौके पर गुफरान अशफी की सदारत में एक महफिल सुखन का भी इनाकात किया गया। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं रोजगार सूचना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन

आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.nationalinsurance.nic.co.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए।

0: और JSSC परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।

0: After a detailed assessment of the evolving
1: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
2: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
0: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
1: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
0: As projected earlier.
2: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
0: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर।
1: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
2: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए

प्रवचनों के दौरान हुई हिंसा जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल हैं के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है।

0: डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के 7 अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, बहाने क्यों करती हो हम पे तुम भी मरती हो, अभी तो नया साथ है आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज़ में आपने श्रीमान फंटूश का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने क्यों करती हो।
1: और ये स्वर है मोहम्मद रफ़ी का, फिल्म का नाम है सहेली। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।
0: सबसे तुम जुदा सही, हुस्न के खुदा सही, अदा ही अदा सही, हम भी बुरे तो नहीं। नजर में कदा सही, जुल्फ इक घटा सही, तुम पे सब फिदा सही।

गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: कॉमिक क्रिएटर हैं।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है इसलिए आप कह रही है।
1: दरअसल ये जो बात है ना इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत सही है
1: ना। अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे, उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा।
1: अच्छा तो आप बताइए आप किन मौकों पर क्षमा करती
2: हैं? मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना तो उसमें क्या होता है, हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन किन बातों
2: की? साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, यानी इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया, क्षमा मांग ली, तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे,
1: उन पर
2: इस विषय पर भी
1: तनाव बहुत होता है
2: जी।
1: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं, एक हो जाते हैं और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है।
2: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
1: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुँचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार वृहद है, बहुत विराट है
2: जी।
1: और तरह तरह की साड़ियाँ होती हैं, और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख

0: पूछता है कि फला मौके पर फला ने ये
1: ये
0: साड़ी दी
1: साड़ी
0: थी।
1: दी थी, तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है। और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं, पर अगर हम
0: और ये जो मौसम है ना, बारिश का मौसम, इसमें जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है। और चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो
1: यानी
0: जाती
1: वो
0: है।
1: खाने का जायका बढ़ा देती है।
0: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का। सुनते हैं ये गाना।

0: हाँ तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की, और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपनी सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई

0: राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
1: बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
0: और ममता जी, ये साड़ियाँ ना वजन में बहुत ज़्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाली रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियाँ बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियाँ सुंदर मेल है।
1: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों की डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
0: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध हैं।
1: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं, अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती, बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है।
0: जी, और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता माहेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियाँ जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
1: माहेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं, बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
0: और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हथकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा है, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
1: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कर आती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, पर भूलने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता
0: मैं
1: है?
0: तो झगड़ती नहीं
1: ऐसा नहीं हो सकता
0: नहीं बिल्कुल नहीं
1: ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे। इस पर हमारे भाई बहनों में ज़्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए, कि कोई तेज़ आवाज़ में सुनना चाहता है, कोई धीमी
1: धीमी
0: आवाज़ में,
1: आवाज में
0: तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं। ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल
1: ये
0: झगड़े।
1: नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर
0: तो
1: गए
0: बात
1: होंगे ना
0: कि पत्नी से डांट खानी
1: हाँ,
0: पड़ेगी
1: क्यों आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात
0: तो हमने तो इसलिए बता दिया, और आपने भी बता दी
1: हाँ,
0: कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही
0: तो
1: सामान्य सी बात है
0: हाँ,
1: झगड़ा होना।
0: लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर। मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते हैं, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है,
0: बिल्कुल
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं। पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।

0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये हमारी जो श्रोता हैं इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और वो कहाँ से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहाँ जाए, उसे चाहिए माँ का साथ पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर घर में तनाव ज़्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए तो अलग होना बेहतर होता है, लेकिन जब हम ये कहते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है। बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा। उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर
1: दोनों
0: भी
1: का
0: चाहिए,
1: प्यार चाहिए,
0: प्यार भी चाहिए, और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का
1: दादी
0: घर
1: का
0: भी
1: भी।
0: चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है, तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
0: बिल्कुल सही है, और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीज़ों को टूटने से बचाना चाहिए। चीज़ें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है,
1: जी
0: लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति ज़रूरत से आगे बढ़ जाती है तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, अब ज़माना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इन चीज़ों की। लड़ाई झगड़ों के
1: जी
0: लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है, और काउंसलर्स मतलब दोनों की बातों को सीक्रेट रखते
1: जी
0: हैं, और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है, यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं, या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे, तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने
1: यानी
0: का।
1: बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो
0: बिल्कुल
1: डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना हो।
0: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं।
1: हाँ।
0: सुनते हैं ये गाना।

तेरा मेरा साथ रहे, हमारा और श्रोताओं का साथ बना रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ बातें और करते हैं इस संदर्भ में।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहते कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बातें। कितनी अच्छी बात है ना।
0: बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच भी कि रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था।
1: हाँ।
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में, आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में,
1: और मोबाइल से भी सुनते हैं,
0: हम मोबाइल पे भी सुन लेते हैं क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता हैं जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार चल रही थी, तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है, मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मन मुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है, पर ये मन मुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे ज़रूर होते हैं लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में ज़रा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है,
1: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं।
0: मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर, कि तुमने ऐसा कहा, नहीं नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी, चादर हाँ गीली तौलिया रख दी,
1: सब्जी लाने के लिए बोला था तुमने एक ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए, अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई
0: खास बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं और पति पत्नी के बीच, या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज़्यादा उसे किसी भी चीज़ को ना बहुत अधिक हम महत्व देते हैं, कि वही बात ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
0: वैसे एक बात बताइए सोनाली जी, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
1: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ।
0: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर

0: मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से, जिसने भी जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का
1: हाँ
0: ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
1: मैं
0: कॉफी
1: बना रहा
0: पीनी है,
1: हूँ, तुम पियोगी
0: हाँ ये
1: क्या?
0: वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई
1: बिल्कुल।
0: मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए। तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ हम घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग, मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं
1: अरे
0: या,
1: बहुत सारे हैं उसके, तो बहुत सारे की साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी,
0: हाँ
1: चलिए ये साड़ी
0: ये
1: खरीदना
0: तुम्हारे
1: चाहती
0: लिए
1: हो
0: ले आए
1: कहाँ, या फिर क्षमा कर देना, सबसे जरूरी बात
0: लेकिन
1: है।
0: वहां पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम अहम नाम
1: ये
0: की दीवार है
1: बहुत मोटी दीवार होती है।
0: वो ऐसा करने नहीं देती है। चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो
1: आज
0: हटाओ,
1: तो पूछूंगा ही नहीं, ये आज तो मैं
0: बिल्कुल।
1: पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात
0: हाँ
1: करने ही नहीं
0: तो
1: वाली।
0: सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है,
1: गाना सुनना।
0: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि भैया,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: दिल आ जाता है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना, ये क्षमा करने का, यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं, कहने आपने जो बोला था

0: तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना, जुबा तक ही नहीं आती
1: हाँ, वही अहम की
0: है।
1: दीवार जो होती है ना,
0: हाँ
1: तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है, और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से
0: हाँ,
1: जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे
0: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं।
1: शाम तक चाय के
0: कोई
1: साथ,
0: कोई
1: है
0: तो भी चाय बनाएगा, कोई पकोड़े
1: ना।
0: बनाएगा, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा।
0: हाँ
1: अभी चटनी की
0: अरे
1: रेसिपी भी
0: बहुत
1: बतानी
0: सारी रेसिपीज आई है, हमारे बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिखकर भेजी है,
1: है।
0: जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। ऐसे शब्दों
1: लेकिन
0: की चटनी बहुत बनी है आज।
1: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक।
0: जी
1: एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदाकदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, कि क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
1: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है, अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़
0: दबाव
1: जाती
0: के
1: है
0: खातिर।
1: दबाव के चलते,
0: जी
1: परिवार में, समाज में, दफ्तर में, या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहाँ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट
0: जी
1: होता है, आत्मसम्मान,
0: वो
1: वहाँ
0: टूट
1: जा
0: जाता
1: करता
0: है।
1: है, हाँ चोटिल होता है।
0: जी
1: तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर माफी ना
0: क्षमा न
1: मांगे।
0: मांगे। जी
1: बिल्कुल
0: वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था, गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं, तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
1: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना। तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं, मैं तो मैं दूसरे रूम में फ़ोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।
0: आप
1: क्या
0: कान में
1: बात है।
0: हेडफोन लगा लीजिए ना।
1: हाँ वो भी एक
0: ये
1: तरीका है।
0: ऑप्शन अच्छा है।
1: हाँ, और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती हैं जबरदस्ती है। मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और
0: और एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए चोटन को उत्पात, क्षमा बड़प्पन की निशानी है, क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और भी
0: और
1: तो
0: जी
1: कुछ
0: एक
1: टिप्पणियां
0: साथी
1: हैं।
0: लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदाकदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है, क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है, कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना, कभी कभी क्षमा करने में ज़्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज़्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के।

0: दरअसल क्षमा करने वाला ज़्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहाँ माफ़ी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहाँ पर जिसने माफ़ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात ये भी है ममता जी, कि जो रिश्ता होता है ना कांच की तरह होता है, कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं, इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है, लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे विरास से भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है, क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है, जो सबसे बड़ा उपहार है।
0: क्या बात है, अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफ़ी मांगे, और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो
0: और
1: बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते हैं एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल। तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है।
1: सभी
0: अगर
1: की और खासकर बच्चों की भलाई
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अब
0: अच्छा,
1: हम चाय पीने वाले
0: क्या बात है
1: हैं।
0: भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक।

0: असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए
1: मिटा
0: और
1: दीजिए
0: हाँ
1: दूरी
0: माफ़ी मांगिए और
1: जी
0: ख़त्म कर दीजिए झगड़ा।
1: जी
0: और
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े,
0: हाँ चटनी भी बना सकते हैं।
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, 1 कप धनिया, 2-3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफ़ेद नमक, 1 नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करें और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और नींबू का रस मिलाएं और ज़रूरत के अनुसार 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपने पसंद अनुसार पीस लें और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे पराठे या भोजन के साथ परोसें।
0: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफ़ेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन की कलियाँ और ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून ले। इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, ज़ीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें। सारी सामग्री को ठंडा होने दें। फिर इसमें नमक, हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफ़ी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
1: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काट कर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन, हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे। स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काट कर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले। इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दें। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। करौंदे की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज़्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है। टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काट कर मिक्सी में पीस लिए, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मज़ा आएगा। सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब जब भी सब्जी से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मज़ा आ जाएगा।
0: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी
1: चटनी हाँ,
0: है ना?
1: क्या बात
0: जो
1: है। तो ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए
0: कि उसके बाद चाय पकौड़े मिले
1: मिल जाए
0: तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है,
1: मुझे लगता है
0: और
1: श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना?
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये 1 घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर

0: आपातकालीन उद्घोषक भी 3 दिन बिताए हैं,
1: 3 दिन बिताए,
0: 3 दिन बिताए, 3 रातें हैं असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी,
1: बिल्कुल,
0: तो 3 रातें मैंने
1: ओवरनाइट ट्रांसफर
0: बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया तो बचपन जो है आलोक आपका वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहाँ से लगा था?
0: बचपन बड़ा मजेदार है, मेरा बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
0: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में तो सबको संभालना पड़ता था, और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा तो एक छोटा रेडियो था वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी, तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था, तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ, और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी। तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको वेताल बोलते थे उस समय में,
1: बिल्कुल,
0: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और दोस्तों से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
0: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर से लेने
0: जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया,
1: बाल भारती,
0: बाल भारती, राजा भैया, कई किताबें, कई
1: ढेर,
0: और पराग। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग, जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहाँ पे, जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहाँ एक आज़ादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए, तो वहाँ मायापुरी भी थी, वहाँ माधुरी भी थी, वहाँ फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा। तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहाँ से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
0: पूरा ये नहीं कहूँगा कि पूरा विरोध नहीं था, क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुबह छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की किताब के अंदर,
0: कोर्स की किताब के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लग गए हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी तौर पर,
0: जरूरी तौर पे हो रहा था कि एक और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था।
1: पापा जी को थोड़ा बहुत था। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
0: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफ़ी अलग चीज़ें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीज़ें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियाँ पढ़ रहे थे मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल,
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहाँ रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल,
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिनटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो लोक कथाएं में हिंदी अनुवाद आया करते थे

0: वो भी मौजूद
1: बेहतरीन।
0: रहे होंगे।
1: हाँ, यूक्रेनी लोक कथाएं,
0: बिल्कुल,
1: रूसी लोक कथाएं, गोरकी की कहानियां,
0: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन तो
1: मुल्ला
0: छापा
1: नसरुद्दीन। हाँ, मुल्ला
0: था
1: नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा
0: राधुका
1: कैरेक्टर।
0: प्रकाशन।
1: हाँ, राधुका प्रकाशन, और उसमें कैरेक्टर होता था नाजानू। हाँ,
0: क्या
1: नाजानू की
0: बात है,
1: कहानियां।
0: वाह।
1: और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया। वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी, तो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर
0: बिल्कुल,
1: काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर्स थे ये। तो इनकी भी उपलब्धता थी, और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी।
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है मेरे
0: सबने
1: जनरेशन में।
0: पढ़ी, बिल्कुल।
1: जी।
0: तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
1: जी बिल्कुल। तो
0: कौन सा गाना होना चाहिए?
1: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
0: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बच्चे

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था।
0: मतलब बहुत ही लेट आया।
1: तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहाँ जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहाँ। उसमें प्राण साहब का एक ख़तरनाक रोल था जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई हैं। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
0: अरे
1: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
0: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता था।
1: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण हैं, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो प्रा 01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर

0: में वो प्राण हैं,
1: हाँ
0: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण हैं फिल्मों में वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: लंबे समय
1: वाह।
0: तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में
1: अब
0: अब पाकिस्तान में, हाँ में
1: पाकिस्तान
0: हुआ था, तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
1: बिल्कुल।
0: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो, मुझे
1: नहीं,
0: मुझे ऐसा लगता था।
1: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा
0: हाँ
1: दिख
0: जैसा वो, हाँ
1: रहा
0: जैसी जिसकी नजर,
1: है।
0: तो
1: हाँ
0: मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून्स बनाते थे।
1: ओके
0: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था, तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं,
1: तो उस
0: और
1: दौर
0: ये
1: के
0: एक
1: कौन कौन
0: प्रोफेशन
1: से
0: है।
1: नामों से आप परिचित हुए?
0: अब बहुत सारे, असल में तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे,
1: पहले ही
0: लेकिन
1: बॉक्स
0: उनका
1: में नाम
0: काम,
1: आता था
0: हाँ
1: ली
0: पहले
1: फॉक।
0: बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं, फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। तो ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रट लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूँ।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
0: नहीं, अच्छी चीज़ ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूँगा, तो मैंने जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लम्बू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ
1: नायाब व्यक्तित्व,
0: कलाकारों में
1: बिल्कुल।
0: एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफ़ी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीज़ें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज़ ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफ़ी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं अब वापस पलट के देखता हूँ, तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे,
1: चलते आ रहे थे।
0: तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज़्यादा हो चुका था, जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहाँ पहुँचा। तो ये एक चीज़ थी जिससे मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक्स से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहा होगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूँ और मैं ये भेज सकता हूँ छपने के लिए, तो वो
1: अच्छा।
0: कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था। और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फ़ायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा भेजते थे?
0: लिफाफा भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था, जवाबी लिफाफा टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था।

0: जी
1: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ तो
0: कुछ भी कर सकते हैं,
1: कुछ भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ताउम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में, और
0: अच्छा।
1: सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी, है ना, ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्राइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे, और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देखे लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊँगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ अब, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, 2-3 बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में, मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो चंडे गड़ गए, पहले ही दिन पहले ही कार्टून्स गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
0: और वो भी भिलाई में,
1: भिलाई में, तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपये चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा, क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 रुपये में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे।
0: यस,
1: हाँ, तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे, अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहाँ भागना दौड़ना नहीं करना पड़ता था। मुझे याद है 56 रुपये का सेट आता था,
0: हाँ,
1: दो सेट में,
0: और वो बड़ा महंगा लगता था,
1: 56 रुपये बहुत महंगा था, लेकिन मुझे 100 रुपये मिल रहा था महीने, तो मैं 2 सेट खरीद सकता था महीने। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
0: क्या बात है, लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से देने लगे?
1: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा, मुझे मेरी कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मतलब मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए,
0: अपनी बड़ी होनी चाहिए।
1: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में, गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी। तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की, मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे।
0: कितने साल चलाई
1: वो? हमने चलाई करीब 4 साल।
0: अच्छा, और किताबें सब वापस आई सही सलामत?
1: हाँ, मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
0: अलग कहानी,
1: अलग कहानियां हैं, वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज है।
0: बहुत सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई, ऐसा कोई मौका आया?
1: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, और लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है, और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बाल हंस में आने लग गया, उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके। तो मजे की बात ये थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे, मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपये भी महीने के बना ले रहा है,
0: बहुत ज्यादा रकम,
1: बहुत बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही ठीक ठाक, और आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा?
0: अच्छा, फिर
1: मैं 9वीं में फेल हो गया।
0: अरे बाप रे बाप,
1: हाँ,
0: मतलब ये तो बम गिर गया,
1: तबाह हो गया मैं।
0: अच्छा,
1: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
0: नहीं आगे की कहानी सुनेंगे, आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन को अंधेरे चलेंगे,
1: चलिए कहां

0: नवी में आप फेल हो गए।
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है।
0: हाँ, कि फेल हो जाऊंगा।
1: फेल हो जाऊंगा
0: मतलब पढ़े नहीं थे कुछ?
1: नहीं, मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे नवी होता भी फिसलदार मैदान ही है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा दसवीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया।
0: नहीं, और ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट गया,
1: छूट गया,
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं, वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पर आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया, तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं। तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने लग गए थे। तो मतलब क्लास नाइन्थ का एक लड़का है जिसका हर महीने
0: कहीं ना
1: कहीं वो छप रहा है, तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है कि हम ही हमें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पर कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो नवीं में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो। क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे एक साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है एक साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे।

0: सबको पता है आप 9th में थे, पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप 10वीं नहीं गए, आप वापस 9th रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका, उसमें बच्चे की गलती है नहीं है।
1: हमारे यहाँ वो तो सोचा ही नहीं जाता, हाँ, वो जो एक्सेप्टेंस वाली बात है
0: ना, तो स्टिग्मा हाँ, आ जाता है वो।
1: हाँ,
0: तो स्टिग्मा तो आ गया था और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो।
1: हाँ,
0: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, अभी तक आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते हैं,
1: नजरें कैसे मिलाएंगे?
0: नजरें कैसे मिलाएंगे?
1: हाँ।
0: उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
1: हाँ।
0: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल।
1: पूरे एक साल
0: देखिए

0: फिर आपके जो दोस्त हैं वो एक क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते
1: नजरें
0: हैं,
1: कैसे मिलाएंगे?
0: नजरें कैसे मिलाएंगे? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
1: हाँ
0: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे एक साल।
1: पूरे 1 साल।
0: देखिए, बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो
1: बिल्कुल।
0: फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है
1: घर
0: ना।
1: घर
0: एक साल
1: वालों का एटीट्यूड क्या था?
0: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
1: क्या काम था वो?
0: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है वो मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे,
1: अच्छा, ये सब
0: हाँ,
1: चल रहा था।
0: और ये सब चल रहा था। उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया। वो भी मेरे ख्याल से मेरे 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर, तो वो शुरू किया मैंने। मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिज़नेस कैसे होता है। मैं आमतौर पे लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी वो ख़त्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक
1: फेल्योर
0: बच्चा फेल
1: का
0: होता है
1: उस
0: तो वो
1: बच्चे के ऊपर
0: अपने
1: क्या असर
0: अपने
1: पड़ता
0: आप
1: है।
0: में वो एक मौत से गुजर रहा होता है, उसके
1: करेक्ट।
0: ऊपर नई चीज़ें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नज़रों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: किस शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 9th में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि 9th में फेल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं। हाँ, जहाँ वो कहानी बेस्ड है वहाँ तो होते हैं। तो फिर उस चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें जो मैंने झेली थी, बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहाँ मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं। एक एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं।

0: ये लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह
1: एक्सप्रेस
0: पाके
1: होते
0: निकल
1: हैं।
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
0: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहाँ उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद। नाइन्थ
1: अच्छा,
0: सेकंड ईयर,
1: ये एक तरह की
0: ये एक
1: राहत
0: तरीके
1: थी।
0: की हाँ राहत थी।
1: हाँ
0: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
1: अच्छा,
0: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना,
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल,
0: घबराहट नहीं थी।
1: हाँ
0: तो अब मैं ज़्यादा खुल के मज़े कर रहा था क्लास में, क्योंकि
1: हाँ
0: ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकेंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे, तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीज़ें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
1: अच्छा,
0: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो
1: सर्कुलेट
0: रही
1: होती
0: थी
1: रही,
0: उसी शहर में।
1: क्या बात
0: हाँ, तो
1: है।
0: ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे, आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज़ का।
1: एक
0: तो वो एक
1: नए सिरे से बनने की तैयारी थी।
0: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
1: बिल्कुल, ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया,
0: सुपर कमांडो ध्रुव
1: प्रतिशोध
0: की
1: की
0: पहली किताब, हाँ, प्रतिशोध की
1: ज्वाला।
0: ज्वाला थी वो, और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
1: हाँ,
0: तो
1: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा।
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी करीब
0: हाँ,
1: करीब।
0: धीरे धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे
0: धीरे
1: धीरे धीरे
0: करके, और
1: मेरी मेरी
0: उनका
1: पीढ़ी, मेरे
0: अंत
1: ख्याल
0: हो
1: से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी कहानियाँ याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा, मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज़ को खुद करके ना देखूँ, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीज़ें। कार्टून्स छप रहे थे लेकिन मुझे मज़ा आना बंद हो गया था कार्टून्स में। मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से,
0: अच्छा।
1: तो हाँ ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में दो बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है। तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हैं वो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिस जाता था, कार्टून्स देख के आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से, तो
0: अरे
1: 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपये दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मज़े का काम था। क्योंकि एक ही सड़क पर सारे अखबारों के ऑफिस होते थे, तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कहीं ना कहीं छप जाता था।
0: वाह।
1: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहाँ मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, और मैं कार्टून नहीं बनाऊँगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेकर कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूँगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्रांड की एक लेगेसी

0: अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूँ लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज़ करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूँ उससे अटैच भी हूँ और डिटैच भी हूँ। अटैच हूँ जब तक मैं उसको बना रहा हूँ, डिटैच हूँ द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूँ। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पर जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी और वहाँ जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूँगा और मैं एक एनिमेटर बन भी जाऊँगा। तब तक तो मुझे नहीं पता था कि एनिमेटर कौन होता है, इन बिटवीनर कौन होता है, डायरेक्टर कोई और होता है। मेरे दिमाग में मैं डायरेक्टर था लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको डायरेक्टर बोलते हैं। तो उसकी भी बड़ी लंबी सी कहानी है कि मुझे नहीं पता था लाइट बॉक्स क्या होता है। तो मैं जेरोक्स मशीन वाले के वहाँ खड़े होकर दुकान में मैं लगातार जेरोक्स करके उसको मूवमेंट देता था ड्रॉइंग्स को। अदनान सामी का एक गाना आया था लिफ्ट करा दे, लिफ्ट करा दे पूरा एनिमेट किया था जेरोक्स कर करके।
1: अरे
0: वो कहीं मेरे पास रखा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो उसके इजी तरीके भी हैं। मुझे डिफिकल्ट तरीके पता थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़े थे। तो मैं उस तरीके से ही काम कर रहा था। तो एनिमेशन के लिए भी बहुत हाथ पैर मारे मैंने। भारत में एनिमेशन का कोई
1: सिस्टमैटिक मामला नहीं था,
0: स्कोप ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। एक फिल्म बन रही थी जो मैं क्लास 9th में था तब से बन रही थी, वो अभी तक बनी नहीं थी, उसका नाम भागमती है। भागमती फाइनली उन्होंने लाइव एक्शन और एनिमेशन मिला के कुछ बना दिया था बाद में। मैं तब मेरे ख्याल से ऑलरेडी एनिमेशन में आ गया था तब तक। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी और जो कोर्सेज थे वो बहुत महंगे थे तो मैं वो नहीं कर सकता था वो कोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो मुझे मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम अथाबिरा है। मतलब वहाँ आप आलोक शर्मा अथाबिरा लिख के चिट्ठी डालिए मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गाँव था वो। तो उसके लिए उस गाँव से निकलना बहुत ज़रूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था। तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा। उन्होंने बोला ये सब कचरा है मेरे पिछले 6-7-8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको मतलब अभी तक तो मैं तुरम कहाँ था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा ख़राब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहाँ मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज़ है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ और सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल,
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहाँ जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहाँ से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत मेहनत का काम है। मैं लिखना ज़्यादा पसंद करूँगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं। उस जगह तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार स्टूडियो में थे। तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है। तो उनको कहानियां पसंद आने लगी, उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्राइंग करें। वहाँ से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ। तब तक मार्वल के साथ गौतम कॉमिक्स था, गौतम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीज़ें। तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज़ से, ड्राइंग से। क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज़ को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना वो पूरा रस
1: निकल
0: जाता है। अब वो काम बन जाता है।
1: यस,
0: या बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं,

0: एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है
1: हाँ
0: तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मंगा, जिनको बोलते हैं मंगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मंगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मंगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहाँ जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहाँ पे। तो मैंने बहुत ख़राब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे
1: बिल्कुल
0: स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहाँ मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहाँ मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मज़ेदार था, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता था, अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन ख़राब कर दिया, ख़राब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना दे की आवाज़ है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: काज
0: देने
1: नहीं
0: लेकिन आदमी काम का है।
1: हाँ
0: लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, वो 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
0: नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं, मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी, वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए हैं तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट
0: हाँ, वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल
0: सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं
0: लिफ्ट करा दे।
1: अदनान समी की आवाज।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मेहमान।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया

0: लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो शिक्षकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर

विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांसी वलिशेट्टी ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। शाम 6 सुनिए भोजपुरी, भोजपुरी लोकगीत, भोजपुरी समाचार बुलेटिन। रोज की तरह आज भी हम शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। वापिस स्टूडियो शाम 6:10 पर प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। शाम 6:40 पर सुनिए भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस की प्रस्तुति होगी शाम 7:00। शाम 7:15 पर सुनिए कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास, सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम है ये। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल आकाशवाणी के पटना केंद्र से हम रिले करेंगे शाम 7:25 पर। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद।

रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संसद समीक्षा। रात्रि 8:15 पर हेलो मनपसंद का शेष भाग हम प्रस्तुत करेंगे। रात्रि 8:45 पर सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरभ। रात्रि 9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और तब आप सुनेंगे

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग। 10:30 पर सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। हिंदी समाचार रात्रि 11 बजे और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

मेरे घर में आओ गणेश एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे संजय गिरी की आवाज़ में। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम वंदन में अब आइए सुनते हैं अरविंद सिंह और सौम्या वर्मा की आवाज़ों में संयोग श्रीवास्तव का लिखा एक भजन जिसे स्वरबद्ध किया है सुनील बारी ने। एल्बम का नाम है हे महावीर बजरंग।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी आप सुन रहे थे अरविंद सिंह और सौम्या वर्मा की आवाज़ों में हे बजरंग हे महावीर बजरंग एल्बम का ये टाइटल भजन। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम वंदन में अब आइए सुनते हैं ये भजन।

बनु पौड़ी तेरे दरबार की एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज़ में। और अब इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदन यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाइए, शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते और अपनों से भरे कार्यक्रम घर आंगन में। सखियों, घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है अपनों के प्यार से, आंगन में गूंजती किलकारियों से, तुलसी के चौरे पर जलते दिए से और हम महिलाओं की अटूट शक्ति से। वैसे ही सखियों हमारा भी रिश्ता है। आज के सुहाने सफ़र में मैं आपकी दोस्त सुनीता लेकर आई हूँ ढेर सारी बातें। आज हम बात करेंगे समाज की कुरीतियों के खिलाफ उठी आवाज़ों की, अगस्त महीने की उस महान क्रांति की जिसने हमें आज़ाद कराया और आसमान का सीना चीरकर उड़ान भरने वाली हमारी कारगिल गर्ल गुंजन सक्सेना की। तो सखियों, चाय की प्याली हाथ में थाम लीजिए, रेडियो की आवाज़ थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके घर आंगन में गीतों की बहार आने वाली है। सखियों, आज का हमारा यह विषय बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर है। दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक ऐसी सामाजिक बुराई है

जो न केवल कानून अपराध है बल्कि यह बेटियों के आत्मसम्मान और उनके अधिकारों का हनन भी करती है। यह हम महिलाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम एकजुट होकर इस कानूनी अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाएं और समाज को नई दिशा में प्रेरित करें। जब तक हम महिलाएं खुद इस बदलाव की शुरुआत नहीं करेंगी तब तक इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करना मुश्किल है। सखियों, हर महिला को पता होनी चाहिए कि दहेज मांगना या दहेज देना कानूनन जुर्म है। किसी भी आपात स्थिति में 1091 या 112 पर तुरंत संपर्क करें। अपने आसपास की महिलाओं का खुलकर बताएं। कोई भी पीड़ित महिला या उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन या महिला हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सखियों, इस कुप्रथा के कारण बेटियों को आज भी कई जगहों पर बोझ समझा जाता है। शादी के बाद भी और दहेज की मांग के लिए बेटियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। लड़कियों के माता पिता अपनी जमा पूंजी या कई बार कर्ज लेकर भी उनकी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर होते हैं। सखियों, बेटियों को इतना शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाएं कि उन्हें किसी के आगे झुकना ना पड़े, वे अपने दम और अपने बलबूते पर खड़े रहें। बेटियों को दहेज की भारी भरकम रकम देने की बजाय उस पैसे को उनकी शिक्षा और करियर पर खर्च करें। जब एक लड़की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो समाज में उसका सम्मान बढ़ता है और वह अपने फैसले खुद ले सकती है। यदि कोई परिवार शादी के लिए दहेज की मांग करता है तो बिना डरे उस रिश्ते को ठुकरा दें। सखियों, समाज को बदलने की शुरुआत हमेशा हमारे अपने घर और विचारों से होती है। जब हम अपनी बेटियों को दहेज के बजाय अच्छी शिक्षा और आत्मनिर्भरता का उपहार देंगे तभी इस अपराध का जड़ से खात्मा होगा। हमारी ताकत हमारी एकजुटता में है। हम ना तो दहेज का समर्थन करेंगे और ना ही इसे चुपचाप सहेंगे। इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं आज का पहला गीत।

अभी हमने कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में जो गीत सुना, ये गीत फिल्म दिल कितना नादान से लिया गया था। सखियों, चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगस्त क्रांति के उस ऐतिहासिक जज्बे को पूरी तरह से महसूस करते हैं जिसने देश को

हिलाकर रख दिया था। अगस्त का महीना सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हर भारतीय, खासकर हम महिलाओं के भीतर छिपी अदम्य शक्ति और साहस का प्रतीक है। सखियों, अगस्त का महीना इतिहास में क्रांति का महीना यानी कि मंथ ऑफ रेवोल्यूशन माना जाता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में इस महीने का बहुत बड़ा और ऐतिहासिक महत्व है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी को अगस्त क्रांति कहा जाता है। गांधी जी ने इसी दिन देशवासियों को करो या मरो का नारा दिया था, जिसने हर भारतीय के अंदर आज़ादी की लौ जला दी। इस आंदोलन में अरुणा आसफ अली, उषा मेहता और सुचेता कृपलानी जैसी वीरांगनाओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व किया और अंग्रेजों की नाक में दम कर दी। सखियों, अगस्त महीने की इसी तारीख को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों को तोड़कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और लाखों गुमनाम क्रांतिकारियों का बलिदान है। सखियों, आज भले ही हम अंग्रेजों से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन समाज में हो रहे कुरीतियों, अशिक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से आज़ादी पाना अभी भी बाकी है। जैसे पिछले संवाद में हमने दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात की थी, वैसे ही आज की नारी को अपने अधिकारों के लिए खुद एक क्रांति बनना होगा। सखियों, इस अगस्त के महीने में यह संकल्प लें कि हम अपने समाज को और बेहतर, सुरक्षित और शिक्षित बनाएंगे। सखियों, जब पुरुष नेताओं को जेल में डाल दिया था, तब देश की महिलाओं ने इस क्रांति की मशाल को बुझने नहीं दिया। अरुणा आसफ अली कड़े पहरे के बीच 9 अगस्त को मुंबई में तिरंगा फहराकर अंग्रेज़ों को चुनौती दी, इसीलिए उन्हें अगस्त क्रांति की रानी भी कहा जाता है। वैसे ही उषा मेहता अंग्रेज़ों से छिपकर सीक्रेट कांग्रेस रेडियो चलाया, जिससे देश भर में क्रांतिकारियों तक खबरें और संदेश पहुंचाए जाते थे। आज हमें किसी विदेशी ताकत से नहीं लड़ना है, बल्कि हमारे समाज के भीतर छिपी उन बुराइयों के खिलाफ एक नई क्रांति की शुरुआत करनी है। हर एक सखियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होना होगा, ताकि वह समाज में बराबरी का हक पा सकें। और इसी के साथ आइए सखियों, सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुन, सोचतानी की काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई
2: त रोकले के बा।
1: रोकले तो कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी
2: हमरा से
1: तुहरा से। तो बतावो,
2: आकाशवाणी बाना हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा,
1: तो ओकरा से हमरा के का फायदा बा।
2: फायदा बा जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुँच जाई।
1: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई।
2: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242।
2: हाँ
1: तो बहिने फोन लगावत बानी 870-001-4242 पर।
3: सखियों, आज हम एक ऐसी जांबाज और प्रेरणादायी महिला शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छूकर इतिहास रच दिया। फ्लाइंट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, उन्हें कारगिल गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। गुंजन सक्सेना का जीवन हम सभी महिलाओं के लिए यह साबित करता है कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी रूढ़िवादी सोच या मुश्किल राह हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सखियों, गुंजन सक्सेना 1999 के कारगिल युद्ध क्षेत्र में चीता हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी। उन्होंने ट्रांस और बटालिक जैसे बेहद खतरनाक और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी के बीच उड़ान भरी। युद्ध क्षेत्र से घायल भारतीय सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और सैनिकों तक रसद व ज़रूरी सामान पहुंचाया। सखियों, इन्हें युद्ध में दिखाए गए अदम्य साहस, सूझबूझ और देश सेवा के लिए उन्हें शौर्य वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सखियों, पुरुष प्रधान यानी कि उस दौर में वायुसेना में महिलाओं को लड़ाकू या युद्ध क्षेत्रों में भेजने की अनुमति नहीं थी। गुंजन जी ने न केवल इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ा, बल्कि पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। उन्होंने साबित किया कि देश की रक्षा और साहस के मामले में महिलाएं किसी से भी पीछे नहीं हैं। सखियों, जैसे अगस्त का महीना क्रांति का संदेश देता है, वैसे ही गुंजन सक्सेना जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपनी परिस्थितियों से लड़कर अपने सपनों को उड़ान तय करनी होगी। इसी के साथ सखियों, आइए सुनते हैं एक और गीत।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

भरत सिंह भारती और उनके साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे बरसाती भोजपुरी लोकगीत। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ रजिया सुल्ताना से भोजपुरी में समाचार सुनी। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में कोनो बदलाव ना कई के ओकरा के 5.25% पर बरकरार रखले बा। मौद्रिक नीति के घोषणा करके बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कहलन कि देश के आर्थिक विकास के मजबूत मांग के समर्थन मिल रहल बा। उ कहलन कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़त अर्थव्यवस्था बनल बा। श्री मल्होत्रा बतौलन कि चालू वित्तीय वर्ष से अप्रैल जून तिमाही में देश के अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल के बैठक भइल। बैठक में 17 एजेंडा पर मुहर लागल। एहमे राज्य सरकार अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत लंबित मामलन के तुरंत निपटारा खातिर 19 विशेष अदालत के स्थापना के मंजूरी देले बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद के बैठक में ई प्रस्ताव पर मुहर लागल। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी बतौलन कि ई अदालतन खातिर 171 पद के सृजन के स्वीकृति दिहल गइल बा। श्री चौधरी बतौलन कि हर घर तिरंगा अभियान के सफल आयोजन खातिर कैबिनेट मंजूरी मिल गइल बा। एकर उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता आ तिरंगा के प्रति सम्मान के भावना जन जन तक पहुंचावे के बा। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होखे वाला भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव कइल गइल बा। 7 अगस्त से ई समाचार बुलेटिन सांझ के 6:05 के बजाय अब सांझ के 5:30 से सुनल जा सकेला। भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुनल जाई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिलल हार के समीक्षा करे खातिर आज भारतीय जनता पार्टी के पटना प्रदेश मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक भइल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई गो सदस्य बैठक में मौजूद रहलन। बैठक में हार के कारण, बूथ स्तर के प्रदर्शन आ भावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा भइल। साथ ही संगठन के औरी मजबूत बनावे आ कार्यकर्ता सभे से संवाद बढ़ावे पर जोर दिहल गइल। कृषि विभाग खाद के कालाबाजारी आ जमाखोरी के आरोप में पूर्वी चंपारण के जिला

0: रजिस्ट्री पदाधिकारी के तत्काल प्रभाव से पटना मुख्यालय में योगदान करे के निर्देश देले बाड़न। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा बतौलन कि मोतिहारी में कृषि विभाग के संयुक्त छापेमारी के दौरान 6 गो खाद दुकान आ 1 गो बीज विक्रेता के लाइसेंस निलंबित कर दिहल गेल बा। उ कहलन कि किसानन के तय दाम पर जरूरत भर खाद उपलब्ध करावे आ धांधली करे वाला लोगन के खिलाफ बड़ कार्रवाई आगे भी जारी रही। मेडिकल परामर्श समिति नेट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहला चरण खातिर पंजीकरण के प्रक्रिया शुरू कर देले बा। पहला चरण के पंजीकरण आजू से 12 अगस्त दोपहरिया 3 बजे तक हुई। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त सांझ 6 बजे तक कैल जा सकेला। उम्मीदवार काल से 13 अगस्त तक अपना पसंद के विकल्प भर सकत बाड़न। काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान सहायता खातिर उम्मीदवार टोल फ्री नंबर 1800102763 पर संपर्क कर सकत बाड़न। प्रदेश के नगर निकायन में सफाई कर्मचारियन आ चालक सभी के साथ दिन के चल रहल हड़ताल के चलते साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित बा। हड़ताल के लेके नगर विकास आ आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार सफाई कर्मचारियन के प्रतिनिधि के साथे बातचीत कैलन। बातचीत में सफाई कर्मचारी सभी के उनकर मांग पर आजू उम्मीद से भरल जवाब देवे के बात कहल गेल बा। एही बीच पटना के मेयर सीता साहू आजू सांझ के सशक्त अस्थायी समिति के बैठक बुलावले बाड़ी। ई बैठक में हड़ताल सहित बाकी मुद्दा पर भी चर्चा होखी। प्रदेश में ज्यादातर हिस्सा में मॉनसून के सक्रियता से लगातार बारिश हो रहल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के अनुसार पिछला 24 घंटा के दौरान कई जगह भारी बारिश भइल बा। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी में सबसे ज्यादा 135 मिलीमीटर बारिश दर्ज कैल गेल बा। विभाग काल बक्सर, गया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार आ सीवान जिलन में भारी बारिश के चेतावनी जारी कैले बा। राज्य के बाकी जिला में भी बारिश के संभावना बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भए।
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

थकल मन के जे सुकून का एहसास दे जाई, सावन के हर बूंद जीवन में विश्वास दे जाई, शिव का भक्ति, प्रकृति का हरियाली आ प्रेम का संदेश, सावन का पावन महीना हर दिल के नया आस दे जाई। नमस्कार श्रोता सभी, रउआ लोग सुन रहल बानी जा अपन प्रिय रेडियो कार्यक्रम गांव घर। हम हैं राउर सखी, सहेली, दोस्त, रनिया बहन, आ हम बात करब एगो ऐसन महीना के जवन खाली कैलेंडर का एगो महीना नहीं बल्कि मन का शांति, जीवन के नया ऊर्जा आ प्रकृति से जुड़ल ओकर अनुपम अवसर देवेला। जी हाँ श्रोता सभे, आज का विषय बाटे आज के भाग दौड़ आ तनावपूर्ण जीवन में सावन मास का महत्व। तो आई जा बिना कोनो देर कैले यह सुंदर आ प्रेरणादायक यात्रा के शुरुआत कई जाओ। श्रोता सभे, आज का इंसान जितना आधुनिक होत जा रहल बाटे उतने वो अपने जीवन में तनाव, चिंता आ अकेलापन से घिरत जा रहल बा। सवेरे से जौन मोबाइल का शुरुआत हो रहल बाटे वो रात तक वही के साथ समाप्त भी हो रहल बा। काम का दबाव,

परिवार का जिम्मेदारी, प्रतियोगिता और भविष्य के चिंता मन के शांति के कहीं पीछे छोड़ देले बाटे। ऐसा समय में प्रकृति स्वयं अपने रुके, मुस्कुराए और जीवन के नया दृष्टिकोण देवे के संदेश देला। यह संदेश लेकर के आवेला सावन का पावन महीना। सावन खाली एगो बरखा का महीना नहीं हवे, बल्कि ई मन, तन आ आत्मा के ताजगी देवे वाला समय है। जब चारों ओर हरियाली छा जाला, पेड़ पौधा नया जीवन से भर जाला, खेत खलिहान लहराए लगे ना आ ठंडा ठंडा हवा चले लगेला, तब मन अपने आप प्रसन्न हो जाला। वैज्ञानिक भी मानेला कि प्रकृति के बीच कुछ समय बितावे से तनाव कम होला और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होला। यही से सावन का महीना हमने के प्रकृति के और करीब ले आवे के प्रेरणा देला। सावन का धार्मिक महत्व भी अत्यंत विशेष बा श्रोता सभे। ये महीना भगवान शिव के समर्पित मानल जाला। मान्यता ये बा कि ये पूरा महीना में भगवान शिव का पूजा, जलाभिषेक, व्रत आ शिव मंत्र का जाप करके मन में शांति मिलेला आ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होला। जब आदमी कुछ समय ईश्वर के आराधना में लगेला तो उनकर मन चिंता से हट करके आत्मविश्वास, धैर्य आ संतोष की ओर बढ़ेला। इहे कारण बा कि सावन खाली एगो आस्था का पर्व नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन का भी एगो सुंदर माध्यम हुए। सावन हमनी के ई सिखावेला कि जीवन में खाली काम ही सब कुछ नहीं होला। जैसे कि तपत धरती गर्मी के बाद बरखा का बूंद धरती के राहत पहुँचावेला, वैसे ही मनुष्य के भी समय समय पर अपने मन के विश्राम देवे के चाहिए, आराम देवे के चाहिए, परिवार के साथ समय बितावे के चाहिए, प्रकृति का सुंदर आनंद लेवे के चाहिए, भजन कीर्तन सुने के चाहिए, मंदिर जाए के चाहिए, पेड़ पौधा के छाँव में बैठे आ बारखा का दम भरपूर फुहार होकर आनंद लेवे के चाहिए। ये छोट छोट बात हमने के जीवन में नया ऊर्जा भर देला। सावन हमने के ये याद दिलावेला कि जीवन का असली खुशी खाली दौड़े रहे से नहीं होखेला, बल्कि ठहराव भी जीवन के महसूस करे में भी मदद करेला। सावन का महीना सामाजिक और संस्कृति दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मानल जाला। श्रोता सभे, गांव में पेड़न पर झूला पड़ेला। महिला आ जितनी भी लड़की लोग वाली युवा वर्ग के जो भी आदमी बाना, बड़ बुजुर्ग से लेकर के सावन के गीत गावेला। बचपन जौन बाना की बरखा में आनंद लेवेना आ पूरा वातावरण जौन बा के उत्साह से भर उठेला। लोकगीत, कजरी, झूला गीत खाली मनोरंजन का साधन नहीं है श्रोता सभे, बल्कि वो हमनी के लोक संस्कृति आ परंपरा का अमूल्य धरोहर भी हुए। एकरे माध्यम से परिवार आ समाज के बीच प्रेम, अपनापन और एकता के भावना और ही मजबूत करेला। कृषि प्रधान भारत खातिर के सावन का वरदान भी कम नहीं खे। किसान पूरा साल यह महीना के बरखा के इंतजार करेना, कहे से कि अच्छा बरखा के से खेत में हरियाली आवेला, फसल लहलहाए लगेला, अन्न उत्पादन बढ़ेला। आ जब खेत हरा भला हो जाला तब खाली किसान ही नहीं, बल्कि पूरा देश के चेहरा पर मुस्कान आ जाला। ऐसे सावन का महीना खाली धार्मिक आ संस्कृति नहीं, बल्कि आर्थिक आ पर्यावरणीय दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मानल जाला। आज जब पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट और जल परिवर्तन जैसन चुनौती हमनी के सामने बाटे, तब सावन हमनी के प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश देला। ये महीना हमनी के प्रेरित करेला कि हमनी के अधिक से अधिक पेड़ लगाई जा, बरखा के जल का संरक्षण करी जा, नदी आ तालाब के स्वच्छ रखी जा, आवे वाला पीढ़ी खातिर के एगो स्वस्थ हरा भरा वातावरण छोड़ करके जाई जा। श्रोता सभे, सच्चे में ये एगो सावन खाली एगो आँख से देखल नहीं जाला, बल्कि दिल से महसूस करे का महीना हुए। ये महीना जब धरती के हरियाली का चादर ओढ़ लेवेला तब मन भी अपने आप गुनगुनाए लगेला। शायद यह कारण बा कि हमने के लोकगीत में, लोक जीवन में सावन का नाम औते झूला, कजरी और मधुर लोकगीत का याद अपने आप ताज़ा हो जाला। हमनी का लोक संस्कृति में कहल भी गई है, जहाँ सावन का फुहार पड़ेला वही जे गीत अपने आप जन्म ले लेवेला। पेड़ पौधा का डाली पर पड़ते हवा का सरसराहट, बरखा का रिमझिम

आ अपना का जवन साथ मिलेला इस सब कर सुंदर संगम हुए ये सावन। तो आई जा श्रोता सभे अब अपने शब्द के आगे बढ़ावे के आ सुर के दुनिया में हमने के चले के जहाँ सावन के हर बूंद संगीत बन करके बरसेला। तो प्रस्तुत बाटे एगो मधुर मनभावन आ पारंपरिक झूला गीत। आई हमने के यह गीत के साथ सावन के रिमझिम फुहार अपने समृद्ध लोक संस्कृति का आनंद लेहल जाओ। आज के लोकगीत के कलाकार बनी अवधेश कुमार सुनल जाओ।

श्रोता सभी देखें, हमने के जब मनोरंजन के दुनिया में चली ला जा, गीत संगीत सुने ला जा, भजन कीर्तन सुने ला जा, तो ऐसा लगेला कि पूरा हमने के धरती से ले करके, हमने के पूरा वातावरण से ले करके, जितना भी हमने के लोग बाना, जेकरा से भी हमने के मिली जुली ला जा, हमने के मन के साथ साथ सारा चीज जौन बा भक्तिमय हो जाला, तो हमने के बड़ा सुंदर लगेला। सोची जब मन भक्तिमय हो जाए तो आत्मा भी तो बड़ा सुंदर लगी, बड़ा ओकरा के आनंद मिली, दिमाग हमने के बड़ा संतुष्ट सुकून महसूस करी, ऐसा लगी कि अब सब कुछ मिल गई। तो समझ जाए कि हमने के सब कुछ अब मिल ही वाला बा। आ सुने के हमने के एगो सावन गीत।

यह लोक भजन खातिर के अवधेश कुमार जी के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता सभी देखें, सावन के मधुर फुहार आ लोक भजन के यह मनमोहक सफर के बाद अब समय बाटे एगो ऐसन विषय पर गंभीरता से विचार करे के जौन कि आज समाज आ विशेष करके युवा के भविष्य से जुड़ल बाटे। तो देखिए, प्रस्तुत बाटे नशा से बढ़त प्रवृत्ति आ ओकरा से होखे वाला हानि। यह विषय पर एगो महत्वपूर्ण हमनी के वार्ता सुनल जाई, जेकर यह विषय पर हमनी के अपने जौन विचार रखले बानी वहाँ के, तो विचार के रखे वाला बानी सुप्रसिद्ध वार्ताकार श्री ददन पांडे जी। तो आई हमने सब मिल करके ध्यानपूर्वक यह उपयोगी आ जागरूकता से भरपूर वार्ता के सुने के विषय बाटे नशा की बढ़त प्रवृत्ति आ ओकरा से होखे वाला हानि। वार्ताकार बानी ददन पांडे जी, तो सुनल जाओ।

श्रोता सभी देखिए, तकनीकी खराबी के कारण हमने के यह वार्ता के नहीं सुन सकली जा, लेकिन यही के हमने के आगे बढ़ावे के सुनल जाओ। देखी नशा का बढ़त प्रवृत्ति एगो बहुत बड़ कारण बाटे हमने के जीवन शैली। आज के युवा तेज से जौन सफलता प्राप्त कर चाहत बना, जब उनका के मन चाह सफलता नहीं मिलेला तब वो निराश होकर के तनाव

0: हे तकनीकी खराबी के कारण हमने के यह वार्ता के नाई सुन सकले जा, लेकिन यही के हमने के आगे बढ़ावे के सुनल जाओ। देखी नशा का बढ़त प्रवृत्ति एगो बहुत बड़ कारण बाटे हमने के जीवन शैली। आज के युवा तेज से जौन सफलता प्राप्त कैल चाहत बन, जब उनका के मन चाह सफलता नाई मिलेला तब वो निराश होकर के तनाव हो में होकर के एकर शिकार हो जाना, लोग नशा में होखे लगेला। कुछ लोग इस सोच करके नशा शुरू कर देना कि एकरा से तनाव कम हो जाए, लेकिन वास्तव में श्रोता सभी नशा जोन बटे की तनाव के कम नहीं करेला, बल्कि अपने व्यक्ति के मानसिक आ शारीरिक रूप से और भी अधिक कमजोर बना देला। धीरे धीरे वो नशा का आदि हो जाना और बिना नशा के सामान्य जीवन जियल उनके खातिर के बहुत कठिन लगे लगेला। आज नशा के कारोबार भी तेजी से फैल रहल बाटे। कुछ ऐसा स्वार्थी लोग बना जो उनकी अधिक पैसा कमाए के लालच में युवा लोगन के जो आवे वाला हमनी के बाल बच्चा बना जो देश के भविष्य बना उनकरा के नशा की ओर ढकेल रहल बना। स्कूल कॉलेज आ सार्वजनिक जौन भी स्थान के आसपास कई बार हमनी के नशीला पदार्थ के अवैध बिक्री का खबर भी सामने देखे न जा। खाली ई एगो कानून व्यवस्था का चुनौती नहीं है, बल्कि समाज की भविष्य खातिर भी खतरा का एगो बड़ा घंटी है। ऐसे ऐसा अपराध पर कठोर कार्रवाई या समाज के सतर्क रहे खातिर के हमनी के दोनों ही भागीदार बनी जा आवश्यक भी बाटे। नशा व्यक्ति के कार्य क्षमता के भी प्रभावित करेला। श्रोता सभी जवन व्यक्ति जवन आदमी पहले मेहनती और जिम्मेदार होना उहे धीरे धीरे अपने काम से लापरवाह होकर चल जाना। विद्यार्थी जोन बाटे जोन शैक्षणिक समय चल रहल बाटे शिक्षा का समय चल रहल बाटे विद्यार्थी के पढ़ाई छूट जाला, नौकरी करे वाला का प्रदर्शन एकदम गिर जाला, उनका के काम करे में मन नहीं लगेला, व्यवसाय जे भी कर रहल बाटे उ भी प्रभावित होखे लगेला। परिणाम का होला कि आर्थिक संकट बढ़त चल जाला, घर परिवार का परेशानी भी कई गुना बढ़ जाला। नशा के कारण सड़क दुर्घटना तो देखते बनी ओकर संख्या बढ़त चल जा रहल बाटे। शराब चाहे कन्य कई गो नशीला पदार्थ का सेवन कैला के बाद वाहन जौन चल रहल बाटे उ खाली स्वयं खातिर के नहीं खे बल्कि दूसरा खातिर के जीवन कभी बहुत बड़ खतरा बा। श्रोता सब हरेक साल देखिला कि अनेक लोग कई तरह के लोग घटना से अपन जान गंवा देत बाना, ये सब गंभीर रूप से घायल हो जाना। ऐसे नशा का अवस्था में वाहन चलावल भी सामाजिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोण से एगो गंभीर अपराध है। श्रोता सभी आगे हमने के और बातचीत कैल जाए, पहले आई सुन लेवे के हमने के संदेश।
1: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता और सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार,
1: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
2: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान,
1: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
2: डायल करें 8700014242।
1: नंबर फिर लिखी 8700014242।
0: श्रोता सभी अब हमने के अपने कार्यक्रम की ओर चले के देखें सुनल जाओ जौन एकर प्रवृत्ति बाटे बढ़त नशा का प्रवृत्ति बाटे ओकरा से होखे वाला हानि बाटे ए विषय पर भी थोड़ा सा हमने के बातचीत अभी कई ली जाए, लेकिन अब हमने के आगे बढ़ल जाओ आ सुनल जाओ देखें कि जौन अभी हमने के नशा का बात जौन कैली हैं जाए ओकर देखिए ये महत्वपूर्ण विषय के कहें कि देखिए नशा बहुत बुरा चीज है। जेकरा के लत पकड़ लेवेला उ समझ लें कि उ हमने का परिवार तो बर्बाद करबे करेला, मोहल्ला गांव टोला के साथ साथ हमने के राष्ट्र का भी बर्बादी होखेला। कोई भी राष्ट्र का सबसे बड़ शक्ति उनके युवा होखेला। अगर युवा स्वस्थ रही हैं शिक्षित रही हैं जागरूक हुई हैं और नशा मुक्त हुई हैं तो राष्ट्र के प्रति उनका के कोई नहीं रोक सकेला, निष्ठा के प्रति, कर्तव्य के प्रति कोई रोक नहीं सकेला। लेकिन अगर युवा नशा में गिरफ्त आज हो जाइ हैं, आ जाइ हैं, ओकरा सब चपेट में आ जाइ हैं, तेकर प्रभाव खाली एगो व्यक्ति तक नहीं सीमित रहला, बल्कि परिवार, समाज, पूरा देश मने बर्बाद हो जाला। यही सोच के साथ जोन बाटे कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान चलावल जा रहल बाटे, जौन कि युवा के जागरूक करे का एगो महत्वपूर्ण प्रयास बाटे। यह अभियान का उद्देश्य खाली

नशा से दूर करे का संदेश सुनाई हुए, बल्कि युवा के शिक्षा, खेल, कौशल, आत्मविश्वास और राष्ट्र के प्रति उनका निर्माण में सकारात्मक दिशा के आगे बढ़े खातिर के प्रेरित भी करेला। नशा क्षणिक आनंद का भ्रम पैदा करेला, लेकिन धीरे धीरे ये व्यक्ति के सोचे समझे का क्षमता, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और भविष्य के कमजोर कर देला। इसे हर युवा के ये संकल्प होखे के चाहिए कि वो स्वयं नशा से दूर रहा आ अपने मित्र, परिवार और समाज के भी एकरे दुष्परिणाम के प्रति जागरूक करें। विकसित भारत का सपना तब्बे साकार हो पाई श्रोता सभी, जब देश के युवा अपने ऊर्जा सही दिशा में लगावा। शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीक, कृषि, उद्यमित और सामाजिक सेवा जितना भी बाटे ऐसा क्षेत्र में आगे बढ़ करके युवा जौन बना कि राष्ट्र के सबसे बड़ ताकत बन सकेला। ऐसे हमने के मिलजुल करके ये संकल्प ले जा कि नशा नहीं ज्ञान के अपनाई जा, निराशा नहीं उम्मीद के जगाई जा आ अपने प्रयास के एगो स्वस्थ, सशक्त आ समृद्ध तथा विकसित भारत के निर्माण में अपन योगदान दे जा। आ देखी श्रोता सभे कार्यक्रम के हमने के आगे बढ़ावे के हमने के देखी हर एक साल 6 अगस्त के विश्व भर में हिरोशिमा दिवस मनावल जला, चूँकि काल ई महत्वपूर्ण दिवस हुए। ऐसे आज के यह कार्यक्रम में हमने के ओकर संदेश और महत्वपूर्ण के पहले स्मरण याद दिलावतनी कि हिरोशिमा दिवस हमने के युद्ध के विभीषिका, मानव जीवन के महत्व आ विश्व शांति के आवश्यकता का संदेश देला। आइंजा हमने के जाने के कि 6 अगस्त जोन बाटे कि ई इतिहास में इतना महत्वपूर्ण काहे मनावल जला, एकरा के हमने के थोड़ा सा ध्यान दे देवे के। 6 अगस्त 1945 मानव इतिहास का एगो ऐसा दिन हुए जरा में कि कबो भुलाइल ना जा सकत बाटे। ई दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिरावल गई रहे। ये विनाशकारी घटना में लाखों लोग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भइल रहा। अनेक लोग अपने प्राण गवैले रहा और ई एकर असर माने कई साल तक एकर दुष्प्रभाव मानव जीवन पर आ पर्यावरण पर अभी भी दिखाई दे रहा बाटे। हिरोशिमा दिवस खाली एगो ऐतिहासिक घटना का याद नहीं दिलावेला, बल्कि ई पूरा मानवता के शांति, अहिंसा आ भाईचारा का संदेश देवेला। ई दिन हमने के याद दिलावेला कि युद्ध कब्बो भी कोनो एगो समस्या का अस्थाई समाधान नहीं हो सकत बाटे। ऐसे हमने के बात विचार से, सहयोग से आ आपसी विश्वास के मार्ग पर चल करके एगो ऐसन विश्व के निर्माण का प्रयास करे के चाहिए जहाँ शांति, प्रेम और मानवता सर्वोपरि होखे। श्रोता सभे अब थोड़ा सा हमने के मौसम आ मौसम के पूर्वानुमान पर भी एक नज़र डाल लेहल जाओ। देखिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 तारीख से लेके माने आज तक 5 तारीख के दौरान आसमान में घना बादल छावे रहे के संभावना बाटे। जिला के 1-2 स्थान पर गरज चमन के साथ आंधी चले के भी हल्का बरखा होके के अनुमान लगावल जा रहा बा। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्षित आर्द्रता सवेरे 80 से 90% और दोपहरिया में 55 से 60% रहे के संभावना। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण पूर्वा हवा चले के भी अनुमान लगावल जा रहा बा। खड़ा फसल में सिंचाई स्थगित कर दही आ खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहला पर ही करी। मक्का का बुआई 10-15 से 20 दिन के बाद निकौनी कर दही आ मक्का में धन बाल निकलत समय नेत्रजन का उपरिवेशन कर सकेला। आम के पौधा के रोपण का उपयुक्त समय चल रहा बाटे आ पौधा के रोपाई के 10×10 मीटर आ बीज पौधा के दूरी 12×12 मीटर के दूरी पर रखें आ सघन बागवानी खातिर के 5×5 मीटर आ आम्रपाली खातिर के 2.5×2.5 मीटर दूरी रखें। फलदार वृक्ष के हर साल 1 किलोग्राम नाइट्रोजन, 300 ग्राम फास्फोरस आ 700 ग्राम पोटास और 80 से 100 किलोग्राम सड़ल गोबर का खाद का प्रयोग करें। पशुअन में देखें PPR-FMD माने कि खुरपका, मुँहपका रोग आ गलघोंटू रोग का खतरा अधिक बाटे। इस समय ऐसे पशुओं के समय पर टीका कराएं, उनका के स्वच्छ आ सूखा स्थान पर रखें आ बीमार पशुओं के स्वस्थ पशुओं से एकदम अलगे रखें। रोग के लक्षण

दिखाई देला पर तुरंत उनका के पशु चिकित्सक से संपर्क कर ली आ पशुअन के अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण रखी। खरीफ प्याज के रोपाई खातिर के खेत के तैयारी आसमान साफ रहला पर ही करी। खेत के जुताई के प्रति हर समय प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल अच्छा तरह से सड़ल गोबर खाद प्रयोग करी। मानसून के दौरान प्याज के नर्सरी के खरपतवार मुक्त कर दी। जहां आवश्यकता हो कि वैजा समय पर निकाई गुणाई करी। तेज घाम से पौधा के सुरक्षा खातिर के नर्सरी कियारी से ऊपर 6 से 7 फीट के ऊंचाई पर शेड जरूर लगा दे। देखिए श्रोता सभी अब हमनी का समय एकदम बिल्कुल खत्म हो गल बाटे। यह गांव घर कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। अब हमनी का चलेगा समय खत्म हो गल। ऐसे चलत चलत सभी श्रोता लोगन के रनिया बहिन के नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

धरती मैया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। लक्ष्मण शाहबादी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पाख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
0: तो बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
2: विज्ञापन से पहले अभी आप सुन रहे थे नदिया के पार फिल्म का गीत यशपाल सिंह की आवाज में, और अब इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, मैं हूँ राजेश और कार्यक्रम है पैरा मेडिकल है पारस। अभी अभी हमने जो कहा साथियों, उसका अर्थ ये हुआ कि अपने आप को इतना मजबूत कर लो ना, हाँ निचोड़ बता रहा हूँ, मजबूत कर लो कि जब जब ईश्वर आपके लिए कुछ सोच रहा है तो आप ही से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतनी ज्यादा मेहनत कर लो ना कि जो चाहे सो मिल जाए और ईश्वर को वो देना पड़े। कर्म पर विश्वास करो, आगे बढ़ो। जैसे कि इस कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस में लगातार हम आपसे कहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई कर लेने का रोजगार की कमी नहीं रहेगी। खास करके हेल्थ सेक्टर में तो हम ऐसी बात कह सकते हैं कि अगर जो अच्छे से पढ़ाई कर ली ना साथियों, तो आपके लिए रोजगार स्वरोजगार सरकारी निजी कोई मायने नहीं रखेगा। जी हाँ, हेल्थ सेक्टर एकदम वाइब्रेंट है। और अभी हमारी सरकार ने पिछले दिनों ही कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना है। अगर जितने ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, सरकारी हो या प्राइवेट, हाँ आपकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप ANM कर लो, GNM कर लो, पैरामेडिकल के कोर्स में फिजियोथेरेपी कर लो, पैथोलॉजी कर लो, अंकोलॉजी कर लो, कोई भी हो। इसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लो, BSc नर्सिंग है, BSc OT है, जो भी इच्छा हो वो कोर्स कर लो, तो आपके लिए रास्ते बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। लगातार हम आपसे बातें करते हैं और तभी तो अपना नंबर भी बताते हैं कि अगर जो आपको ऐसा लगे कि आपको बात करनी चाहिए, है ना, तो आप उस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर है, नोट कीजिए, है ना, नोट कीजिए, नंबर है 9155558888। जी हाँ, हमने कहा 9155558888। और आगे हम दूसरा नंबर भी आपको बताएंगे, लेकिन हम सिर्फ एक नंबर इसलिए आपको दे रहे हैं कि आपको याद रहे नंबर कि किस पर आपको फोन करना है। आगे चल के हम बताएंगे वो नंबर भी बताएंगे, लेकिन अभी 9155558888 ये नंबर है, इस पर आप बात कर लीजिए। बीच बीच में नंबर आएगा, आपको बता दे रहे हैं जस्ट। हाँ, तो चलिए विस्तार से एक बार फिर डॉक्टर NP प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर आज बात करेंगे। हम लगातार वैसे विषय पर लगातार बात करते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होता है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब किस मुद्दे पर बात करनी है।
5: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
4: हाँ।
5: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का

0: भाव है और नहीं कर पाता
1: है, जानकारियों का ही अभाव है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
1: जी
0: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
1: जी।
0: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई है। तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है। तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है। और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
1: जी एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं।
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है। तो
1: फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गया, गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है।
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। जहां तक रही बात की टोटल की बात है तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहाँ पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना

0: एक पूरा विभाग ही है, तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय विषय जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश और डॉक्टर NP प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में यह है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर है, तो हमने पहले ही बताया था कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता तो एब्रॉड जाए, उसकी इच्छा कहीं भी। नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह हैं, डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ समान है, उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया सो समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
0: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन है,
0: जिसमें उसकी रुचि है उसके लायक उसको बना देना।
1: डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कि आप इस कार्यक्रम में आते हैं और लोगों को जानकारियां, लोगों बोले तो युवा साथियों उनके माता पिता को सही और सटीक

0: एक जानकारियां देते हैं और करियर चुनने में मदद करते हैं। अगर आपको ऐसा लगे साथियों कि फोन करके पूछना चाहिए तो नंबर नोट करें। एक नंबर हमने बताया था, बीच में दूसरा भी बताया, अब दोनों नंबर है 9155558888 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233 9162413233। बस सोचिए, समझिए, जानिए, परखिए। कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेहनत जम के कीजिए, हाँ, और लगन के साथ कीजिए और सही क्षेत्र का चुनाव कीजिए। रोजगार तो झक मार के आपके पीछे आएगी। थैंक यू श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, ये पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर और सुनते हैं कुछ फिल्म संगीत। कार्यक्रम है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। सबसे पहले स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। आज दिनांक 5/8/2026 को मुख्य सचिव बिहार सरकार एवं उद्योग विभाग के सचिव के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला पदाधिकारी के साथ लाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। रोहतास जिले से बैठक में जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा और उद्योग महाप्रबंधक श्री आशीष रंजन शामिल हुए। बैठक में बिहार में व्यवसाय सुगमता बढ़ाने, निवेशकों के लिए पारदर्शी एवं प्रभावी व्यवस्था विकसित करने तथा केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा निर्धारित सुधारों की समयबद्ध प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा द्वारा प्रखंड सह अंचल कार्यक्रम शिवसागर का औचक निरीक्षण कर कार्यालयीन व्यवस्था, कर्मचारियों की उपस्थिति तथा विभिन्न राजस्व एवं लोक सेवा से संबंधित कार्यों की समीक्षा किया गया। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुंचकर पूरी जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिला पदाधिकारी ने दाखिल खारिज, म्यूटेशन, परिमार्जन, ई मापी, भूमि अभिलेखों के अद्यतन, ऑनलाइन आवेदनों के निष्पादन तथा निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र से संबंधित लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व कर्मचारियों एवं राजस्व पदाधिकारियों के स्तर पर लंबित आवेदनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए उनके शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला गोपनीय कार्यालय में जिले के सभी विभाग अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों एवं कार्यालयीन कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विभिन्न स्तरों पर प्राप्त सभी लंबित अनुपालनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में अनुपालन संबंधी मामले अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहने चाहिए तथा सभी संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसकी नियमित समीक्षा करेंगे। कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन के कुल 104 कर्मचारियों का स्थानांतरण पर पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की गई। जिलाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार राजस्व प्रशासन को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कुल 104 कर्मचारियों का स्थानांतरण कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत राजस्व विभाग के 9 पदस्थापित 78 राजस्व कर्मचारियों तथा जिले के विभिन्न अंचल कार्यालयों में कार्यरत 26 जिला कर्मियों का स्थानांतरण किया गया। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन के माध्यम से संपन्न कराई गई, जिससे स्थानांतरण में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समान अवसर सुनिश्चित हो सकेंगे। और माँ मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति की बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित हुई। श्रद्धालुओं की सुविधाओं एवं मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए किए गए महत्वपूर्ण निर्णय। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष माँ मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति भगवानपुर कैमूर की अध्यक्षता में बुधवार को जिला अतिथि गृह में अपराह्न 12 बजे न्यास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंदिर परिसर के समग्र विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था तथा आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। ये तो थी स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर एक नज़र। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में। सुनवा रहे हैं दीवाना फिल्म का ये गीत।

0: इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: कितना आता है?
2: जीरो।
1: मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: और इस गीत के बाद
8: छाया की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा अगले वित्तीय वर्ष में प्लास्टिक के नोट चलन में आने की संभावना। चालू वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.7% रहने का जताया अनुमान। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के कारणों की समीक्षा को लेकर भाजपा की हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, कांग्रेस ने भी की समीक्षा। और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य हुए मनोनीत। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 19 विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इन अदालतों के लिए 171 पद सृजित किए गए हैं।
4: विधि विभाग का एजेंडा था जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों यथा पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित वादों के शीघ्र निष्पादन हेतु 19 अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 171 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
3: श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने हर घर तिरंगा अभियान के सफल आयोजन के लिए 6,12,00,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को जन जन तक पहुंचाना है।
4: कला एवं संस्कृति विभाग का अगला एजेंडा था जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान 2026 के सफल आयोजन हेतु 6,12,00,000 रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई।
3: अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 16 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के संचालन के लिए PWC नियुक्त करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी। कैबिनेट ने राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना को भी मंजूरी दी है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पूर्वी चंपारण जिले में पिपरा कोठी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर शिक्षा मंत्रालय को 30 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। साथ ही मंत्रिपरिषद ने केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 के तहत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102 करोड़ रुपए और मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ सकते हैं। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान ये जानकारी दी।
5: वी आर टारगेटिंग दैट दे हमारा लक्ष्य है कि अगर सब कुछ योजना के एक अनुसार रहा तो वे अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में चलन में आ जाएंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
3: श्री मल्होत्रा ने चालू

0: वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान जताया। उन्होंने बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
1: After a detailed assessment of the evolving
2: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की पटना प्रदेश मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया।
3: चुनाव के संदर्भ में चर्चा हुआ है, बांकीपुर चुनाव में हम पीछे रह गए, नहीं होते थे 30 वर्षों से, उन कमियों को जानेंगे, जनता के जो भावना थी, कार्यकर्ता ने उन बातों को रखा है, उन सब पर हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व विचार करेगा और भविष्य में हमारी जनता, बांकीपुर की जनता हमारी है और हमारी ही रहेगी आगे, उसके पूरा ख्याल बांकीपुर की जनता का रखा जाएगा।
0: इधर कांग्रेस ने भी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के हार के कारणों की समीक्षा की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि गठबंधन में सामंजस्य की कमी के कारण इस सीट पर हार मिली है।
4: हम लोग यदि गठबंधन में हैं तो ये स्पष्ट है कि हमको मिलजुल करके बीजेपी के रोकने के लिए हम क्यों गठबंधन किए हैं कि बीजेपी को रोकना, और यदि कुछ हम में कमियां हैं या अगले में कमियां हैं तो बैठ के इसको दूर करें।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। भाजपा के देवेश कुमार के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर उनका राज्यपाल कोटे से मनोनयन किया गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आकाशवाणी समाचार से इसकी पुष्टि की।
5: हम तो जस्ट अभी उतरे हैं, एयरपोर्ट पे पटना पहुंचे हैं, हमको भी सूचना मिली है कि हो गया है।
0: जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ सकती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। प्रदेश में वर्ष 2012 से अब तक 46 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इससे राज्य का हरित आवरण बढ़कर 15.05% हो गया है। जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर

0: पटना के अरण्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से 2028 तक हरित आवरण को 17% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रदेश में गन्ना आधारित उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज पटना के विकास भवन में शुगर केन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि इससे निवेश प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और तेज होगी। कृषि विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी के आरोप में पूर्वी चंपारण के जिला कृषि पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से पटना मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि मोतिहारी में कृषि विभाग की छापेमारी के दौरान 6 उर्वरक प्रतिष्ठानों और 1 बीज विक्रेता का लाइसेंस निलंबित किया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का आज 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल सैयद अता हसनैन और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान कृषि शिक्षा, अनुसंधान और किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर चर्चा की गई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बेगूसराय जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। अभियान के तहत 2 लाख तिरंगा निर्माण का लक्ष्य है। तिरंगा निर्माण में जीविका दीदियों की मदद ली जा रही है। इधर शेखपुरा जिले में तिरंगा यात्रा के आयोजन को लेकर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। अररिया जिला प्रशासन ने भी अभियान का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में सबसे अधिक 135 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। विभाग ने कल बक्सर, गया, रोहतास, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, कटिहार और सीवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
1: दिनांक 6 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बक्सर, गया एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, किशनगंज एवं सीतामढ़ी जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार एवं सिवान जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने पश्चिम चंपारण जिले की मलदहिया पंचायत के पंचायत सचिव शंकर प्रसाद को 15,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से नल का जल योजना के विपत्र भुगतान के एवज में घूस ले रहा था। सुपौल जिले के बीरपुर की सीमा चौकी न्योर के पास एसएसबी की टीम ने एक व्यक्ति को 100 वॉकी टॉकी के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं सीमा चौकी कटैया के पास 2,63,000 नेपाली रुपए के साथ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत समेकित चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 650 कार्टन शराब के साथ ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। वहीं जिले के चैनपुर भभुआ मार्ग पर वाहन जांच के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 313 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कोरजाना स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित चारपहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 किशोरों की मौत हो गई। औरंगाबाद जिले के बारून स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आज विधायक चेतन आनंद ने अटल टिंकरिंग लैब और स्किल लैब का उद्घाटन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को दी मंजूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा अगले वित्तीय वर्ष में प्लास्टिक के नोट चलन में आने की संभावना। चालू वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.7% रहने का जताया अनुमान। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के कारणों की समीक्षा को लेकर भाजपा की हुई उच्च

0: स्तरीय समीक्षा बैठक, कांग्रेस ने भी की समीक्षा। और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश राज्यपाल कोटे से विधान परिषद सदस्य हुए मनोनीत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शिवहर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
1: सावन मास शुरू होने के साथ ही जिले के मंदिरों और शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहली सोमवारी पर ऐतिहासिक देकुली धाम स्थित भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से देकुली धाम परिसर में नए पुलिस पिकेट का शुभारंभ किया गया है। जिले में इस बार सामान्य से कम बारिश होने के कारण धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। किसान वैकल्पिक सिंचाई के सहारे रोपनी कर रहे हैं, जबकि पहले से रोपी गई धान की फसल में नमी की कमी के कारण वह मुरझाने लगी है। किसान अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो परियोजना के तहत शिवहर के बेलवा घाट से मुजफ्फरपुर के मीनापुर तक बने लिंक चैनल का लोकार्पण किया। लगभग 68.80 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का निर्माण 130 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बाढ़ के अतिरिक्त जल का बेहतर प्रबंधन होगा, सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। श्री चौधरी ने इस अवसर पर करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से 40 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता, सांसद लवली आनंद, देवेश चंद ठाकुर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जिले के 2 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत तरियानी और पिपराही प्रखंडों में योजनाओं का निरीक्षण किया।
2: शिवहर जिला में कुल 19 पंचायतों में कन्या विवाह मंडप के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। 9 जगह पे स्वीकृति दे दी गई है और 3 ऐसे पंचायत है जहाँ पे प्राकलन भी तैयार हो गया और जल्दी आने वाले समय में आपको रातल पर भी काम देखने को मिलेगा।
1: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका और कम्फेड के संयुक्त प्रयास से जिले के

0: पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक अभिनय प्रिय ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 23 जुलाई को आयोजित मेगा क्रेडिट कैंप में बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान से प्रशिक्षित 70 महिलाओं को विभिन्न विकास योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के क्षेत्र के उद्यमियों के लिए जागरूकता संवाद और समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक पटना के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में बैंकिंग योजनाओं, ऋण सुविधाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निष्पादन, अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए। नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य 22 जुलाई को जिला स्तरीय नारकोटिक्स निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में युवाओं को नशे से बचाने और प्रभावी कार्रवाई के लिए कई निर्णय लिए गए। भाजपा की जिला इकाई की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन सह स्मरण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के पशुपालन एवं डेयरी प्रबंधन मंत्री नंद किशोर राम, पूर्व सांसद रमा देवी सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद किया। साइंस फॉर ऑल और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जिला बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यशाला में जिले के विभिन्न विद्यालयों के 95 विज्ञान के शिक्षकों ने भाग लिया। जिले के पिपराही, डुमरी, कटसरी और पुरनहिया प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेजों का संचालन शुरू हो गया है। मुख्य उद्घाटन समारोह पिपराही प्रखंड के शीतलपट्टी विद्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता और सांसद लवली आनंद शामिल हुई। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित विशेष लोक अदालत में 18 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर मौके पर ही निपटारा किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे शिवहर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता हरिकांत सिंह।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद।

0: श्रोताओं नमस्कार। हेलो मनपसंद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त रागिनी। तो प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, और चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे श्रोताओं से और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला कॉल। हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद
0: जी, कहाँ
1: से? नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते
1: जी, मैं सासाराम मोहल्ला मुगलपुरे से बोल रहा हूँ।
0: सासाराम मोहल्ला मुगलपुरा से बोल रहे हैं आप?
1: जी।
0: आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी पहले मेरा नाम जान लीजिए, मोहम्मद सुहैल अंजुम बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा मोहम्मद सुहैल जी, आप तो पहले भी इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं।
1: एक माह हो गया लगभग।
0: अच्छा एक महीना हो गया
1: जी।
0: आज आपकी क्या फरमाइश है?
1: जी फिल्म अनजाना का सुना दीजिए, जो वो गाना है सावन का, रिमझिम के गीत सावन गाए।
0: अच्छा रिमझिम के गीत सावन गाए
1: जी।
0: अभी तो चहलुम बहार भी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: जी जी, आज है हम लोग का प्रोग्राम आज।
0: क्या क्या करते हैं आप चहलुम त्योहार में?
1: जी वही जो ताजिया वगैरह उठती है, और क्या है, फाटिया सचित होता है, यही सब है।
0: तो ताजिया जो है आप लोग पहलगाम भी करते हैं, तो शायद रात में करते हैं?
1: जी जी, आज उठेगा सुबह में, उठने का टाइम उसके बाद फिर बैठ जाएगी 4 बजे, तो फिर रात में उठेगा, रात भर जरूर रहेगा, करीब बहुत तक हो जाएगा पूरा आज कम्प्लीट।
0: सुहैल जी, चहलुम त्योहार की हम ढेरों शुभकामनाएं आपको देते हैं और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। इसी गीत को हमारे एक और श्रोता ने भी पसंद किया है, तो आइए पहले उनसे कर लेते हैं ये बातचीत। हेलो मनपसंद।
1: हेलो।
0: हेलो मनपसंद में कहाँ से आपने कॉल लगाया है, अपनी जगह का नाम बताएं।
1: और शायद आप रागिनी बहन हैं?
0: जी जी बिल्कुल, आपने हमारी आवाज को पहचान लिया।
1: जी जी, और मैं आपका नियमित श्रोता सुरेश गगनीजात, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से।
0: तो बड़ी ही

0: दूर से आप कॉल करते हैं और हमारे
1: मैं
0: कार्यक्रमों को बहुत ही
1: आपके चैनल को
0: बारीकी से
1: सुनता
0: सुनते
1: हूँ,
0: हैं आप।
1: प्रोग्राम लाइक करता हूँ, अच्छे लगते हैं। ये मेल का प्रोग्राम है वो तो क्या ही, बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है।
0: तो आकाशवाणी सासाराम से आपका ये प्यार है जो आपको खींच लाता है, लेकिन
1: बिल्कुल
0: आज
1: जी,
0: हम
1: बिल्कुल हमें
0: आपसे
1: बहुत
0: वादा
1: अच्छे लगते हैं
0: करेंगे
1: जी प्रोग्राम।
0: जी सुरेश जी, आज हम आपसे वादा करते हैं कि आपको मायूस बिल्कुल नहीं करेंगे। और
1: जी
0: आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: देखिए, सावन का महीना चल रहा है, हवाएं बढ़ रही हैं और हर तरफ हरियाली छाई हुई है, हर एक इंसान खुश है, जीव जंतु भी खुश हैं। गीत रिमझिम के गीत सावन गाए, ये गीत सुना दे
0: जी। बिल्कुल सदाबहार दिलकश गीत आपने पसंद किया है, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद का शेष भाग आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे संसद समीक्षा।
1: पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि इस सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉक्टर एम थंबीदुरई ने मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर

विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तन्खा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब ढाई घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंक कर बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत

विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे। हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया। सांसद ने यह भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता

और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है हेलो मन पसंद कार्यक्रम का शेष भाग।
1: हेलो मनपसंद।
2: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी योगेश जी, छत्तीसगढ़ से बड़ी दूर से आपने हमें कॉल किया है, तो आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
2: फिल्म है जीवन मृत्यु और गीत के बोल है झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
1: जी जरूर, आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन योगेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं और अपने बिजी शेड्यूल में से आप कैसे कुछ पल फुर्सत के निकालते हैं रेडियो सुनने के लिए?
2: मूल खेती बाड़ी का काम है और ये तो ऐसा है कि खेत में रहते हैं तो भी मोबाइल ऐप चालू करके सुन लेते हैं कार्यक्रम।
1: जी योगेश जी, ये तो सही में बहुत ही अच्छी बात अब हो चुकी है। पूरी जो दुनिया है डिजिटल हो चुकी है और आप कहीं भी काम करते करते मोबाइल के माध्यम से सासाराम भी सुन सकते हैं और भी आकाशवाणी केंद्रों को सुन सकते हैं, तो ये तो सच में बहुत बढ़िया है। तो चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश जीवन मृत्यु फिल्म के इस गीत के साथ।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: गेरागुवर पासवान खाखड़ा।
0: आपके तो अक्सर कॉल आते हैं हमारे इस हेलो मनपसंद कार्यक्रम में।
1: जी 2 हफ्ते के बाद ही करते हैं हम।
0: जी तो हाँ, आप श्रोता जो नियमित हैं तो उनसे हमारी गुजारिश रहती है कि आप समय अंतराल के बाद, यानी कुछ समय के बाद, 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद हमें कॉल करें। वैसे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोगों को हेलो मनपसंद कार्यक्रम में अपना कॉल लगाना, अपना गीत सुनना इतना अच्छा लगता है। तो चलिए, आज आप क्या सुनना
1: बहुत
0: चाहेंगे?
1: अच्छा लगता है।
0: आज कर्मा फिल्म का कौन सा गीत?
1: कर्मा फिल्म जहाँ कर्म अपना करें।
0: अच्छा, देशभक्ति गीत जो है, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ है। आपको सुनवाते हैं कर्मा फिल्म का देशभक्ति गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार
0: नमस्ते।
1: मैडम, आप कौन बोल रही? अच्छा
0: रागिनी बोल रहे हैं।
1: अच्छा तो आपको और सारा आकाशवाणी परिवार को नमस्कार मैं कर रहा हूँ। कुआ शेख जफर हसन कुआ
0: तो आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं। पसंद आपकी के साथ साथ रात में जो कार्यक्रम होता है हमारे यहाँ ई मनपसंद, उसमें भी आपका नाम शामिल होता है। चलिए, आप सभी श्रोताओं का ये प्यार है।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो मनपसंद, गढ़नुखा से राजकुमार।
0: गढ़नुखा से कौन बोल रहे हैं? राजकुमार जी, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं हेलो मनपसंद कार्यक्रम में। तो आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: हम गाना सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी का,
0: मोहम्मद रफ़ी का किस फिल्म का कौन सा गीत?
1: तेरा। गीत
0: गीत के बोल भी बता दीजिए।
1: के बोल है, तकदीर का फसाना किसको हम सुनाए, दिल
0: अच्छा,
1: में जल रही है अरमानों से छिपाए।
0: तो बड़ा ही गमगीन गीत आपने चुना है। इस
1: जी
0: गीत को सुनने के पीछे की कोई खास वजह? क्यों ये गाना आपके दिल के इतना करीब है?
1: गाना बहुत बढ़िया अच्छा लगता है, म्यूजिक भी बढ़िया है,
0: जी, आपको सैड सॉन्ग सुनने ज़्यादा पसंद है ना?
1: और हम घर का नाम लेना चाहते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: राजकुमार और देवंती देवी, रेणु कुमारी और सविता कुमारी, नेहा कुमारी, प्रिंस कुमार।
0: तो हम सुनवाते हैं आपके परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपकी पसंद का ये गीत।

तो इसी गीत के साथ ही हमारा आज का यह हेलो मनपसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक। तो आप सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि जिन श्रोताओं के कॉल आज शामिल हो चुके हैं वो हमें कुछ दिनों तक कॉल ना करें। अगले बुधवार को हमारे नए श्रोता इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हेलो मनपसंद कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमारा रिकॉर्डिंग समय है पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक, और हमारा नंबर है 0618422110। तो इस नंबर पर आप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक प्रत्येक बुधवार को रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं और अपनी पसंद का गीत प्रत्येक बुधवार को रात 7:50 से रात 8:45 तक सुन सकते हैं। और शेष भाग आप सुनेंगे प्रत्येक शनिवार को रात 7:50 से रात 8:45 तक। और अब इसी के साथ रागिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मन पसंद। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 हुआ चाहते हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर ठीक 8:45 पर प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार

0: किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा, जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रुपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम एंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय गायन पर आधारित कार्यक्रम सुर सौरभ। आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं राग ख्याल आबोगी।

सुर सौरभ कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गिरिजा देवी से उनका गायन। राग था ख्याल अब होगी। और अब इसी के साथ सुर सौरभ कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

उनके अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। आवारा भंवरे जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं सरसराए। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा। फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्यिक किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने।

एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।
2: देखो देखो जानम हम

क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यूमी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यूमी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

0: आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला।
1: काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा, सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म मायने मिस खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी।

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी दिलवाले। फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि द ट्रायल। काजोल ने अपनी फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूं मैं,
2: जल्दी है क्या?
1: घर के जिया,
2: वो क्यों भला?
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूं मैं,
2: जल्दी है क्या?
1: घर के जिया,
2: वो क्यों भला?
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेखा ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग।

वंदे मातरम एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, विशाल मिश्रा की आवाज़ में मनोज मुंतशिर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आर्को ने। और अब आइए, अच्छा सिला दिया एल्बम का टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनवा रहे हैं। शबनम माजिद की आवाज़ है, एसएम सिद्दीकी हैं गीतकार और संगीतकार हैं सबीर अली।

श्रोता दोस्तों, इस वक्त आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र। और इस वक्त आप सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग। रसरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शबनम माजिद को, और अब आइए हम आपको सुनवाएं अजीवासन किड्स की आवाज़ों में अच्युतम केशवम एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इसी के साथ हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी रिमझिम फुहारों की, प्यार के इजहार की और बारिश की बूंदों की। सच पूछिए दोस्तों, तो केवल बरसात केवल मौसम नहीं है बल्कि एहसासों का एक खूबसूरत नाम भी है। कभी भी भीगी यादों को कभी यह भीगी यादों को ताज़ा कर देती है, तो कभी प्रेम की नई कहानी लिख देती है, तो कभी बचपन की कागज़ की नाव और मिट्टी की सौंधी खुशबू हमें फिर से उन सुनहरे दिनों में ले जाती है ना। और दोस्तों, हिंदी सिनेमा ने भी बरसात को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपने गीतों में सजाया है। कभी रिमझिम फुहारों में कभी प्यार का इजहार हुआ, तो कभी बारिश की बूंदों ने विरह और इंतजार की कहानी कही। यही कारण है कि बरसात पर आधारित गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने अपने दौर में थे। लेकिन दोस्तों, बरसात के महीने में या मौसम में जब बादल घिरते हैं, हल्की हल्की फुहारें होने लगती हैं और ठंडी हवाएं भी चलने लगती हैं, तो लोग ऐसे मौसम को जानते हैं क्या कह देते हैं? हमें तो यकीन नहीं होता कि उस मौसम के साथ वे इंसाफ करते हैं या बेइंसाफी करते हैं। इस खूबसूरत मौसम को लोग

बेईमान कह के बुलाते हैं। यकीन मानिए, जब ये बेईमान कहते हैं तो दुनिया सुनती है। जैसे कल सुन रही थी, आज भी आप सुनिए।

दोस्तों, सावन की रिमझिम फुहारें जब धरती को छूती हैं तो हर दिल में प्यार, यादों और मुस्कुराहटों की नई धुन गूंज उठती है। तो आइए, इसी भीगी भीगी फिजा में हम लेकर आए हैं रिमझिम के गीत, हिंदी फिल्म संगीत का एक खूबसूरत सफर, जहां हर गीत बारिश की बूंदों की तरह आपके दिल को सुकून और ताजगी से भर देगा। रिमझिम बूंदों ने छेड़ा है दिल का मधुर साज, भीगी हवाओं में महक उठा है हर एक अंदाज। बरसात के संग गुनगुनाइए प्यार भरे ये नगमे, हर धड़कन कहे संगीत ही है जीवन का राज। तो आइए मुस्कुराइए, और चाय के साथ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, गुदगुदे गलीचे पर सुनिए ये खूबसूरत गीत और आनंद लीजिए इस कार्यक्रम का।

0: बारिश की हर बूंद में छिपी होती है एक नई कहानी। होठों पर मुस्कान हो तो हर शाम लगे सुहानी। हंसी, मस्ती और प्यार के रंगों में डूब जाइए इस दिलकश नगमे के साथ, यादों की बारिश में खो जाइए। दोस्तों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कभी कभी छोटी छोटी शरारतें और प्यारी सी नोकझोंक भी रिश्तों में मुस्कान भर देती है। आज का यह सदाबहार गीत प्यार, मस्ती और बारिश के खुशनुमा एहसास से सराबोर है। तो आइए मुस्कुराइए और इस प्यारे से गीत का आनंद लीजिए।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।

आती है, जिंदगी मुस्कुराने का एक नया बहाना दे जाती है। दोस्तों, सावन की रिमझिम फुहारें जब धरती को अपने आगोश में समेट लेती है तो हर दिल में प्यार, अपनापन और ताजगी की एक नई धुन गूंज उठती है। इन्हीं भीगी भीगी फिजाओं और मौसम की खूबसूरती को सलाम करते हुए आइए सुनते हैं बारिश की मस्ती से सराबोर एक सदाबहार गीत।

बरसाती बूंदों ने मौसम को हंसी बना दिया, भीगी हवाओं ने हर दिल को महका दिया, सावन की हर फुहार बस यही पैगाम ला

चित पर तराने कार्यक्रम में आज जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थी नमक हलाल, अनजाना, सबक और मॉनसून वेडिंग।

बरसती बूंदों ने दिल का पैगाम कह दिया, हर सुरीले नगमे ने मौसम को और हंसी कर दिया। यूं ही महकती रहे आपकी जिंदगी की राहें, हर सावन आपके आंगन में खुशियों का जहां भर दिया। दोस्तों, बारिश की भीनी भीनी फुहारों के साथ सजे सुरीले सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अब इसी के साथ चित्रपट तराने कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, कल एक बार फिर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे प्रातः 5:53 पर। नमस्ते रोहतास कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 7:30 पर।

पसंद आपकी हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:20 पर। कल 8:45 पर सुबह में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। कल सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। साप्ताहिक कार्यक्रम हिंदी कार्यक्रम आप सुनेंगे कल पूर्वाह्न 10:05 पर। आप इस कार्यक्रम में साहित्यिक कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा स्वतंत्रता आंदोलन में पत्र पत्रिकाओं का योगदान, वार्ताकार होंगे अमरेंद्र कुमार। भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी की प्रस्तुति होगी पूर्वाह्न 10:30 पर। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे पूर्वाह्न 11:00 आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। वापिस से स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 5:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम युवाणी। आप इस कार्यक्रम को कल सुनेंगे शाम 5:30 पर। रोज की तरह कल भी शाम 7:15 पर आप सुनेंगे गुड इवनिंग रोहतास। प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान का प्रसारण समय होगा शाम 7:00। शाम 7:50 पर आप कल सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। गजल आप सुनेंगे महफिल कार्यक्रम में रात्रि 9:15 पर। 10:15 पर सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग और फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने आप सुनेंगे कल रात्रि 10:30 पर। ये थी संक्षिप्त जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: पुरानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज आपने सुना राग यमन में सितार वादन। कलाकार थी श्रीमती इंद्राणी चक्रवर्ती। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार

0: होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मान हानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते साहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretations issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour for a timely reform. The strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019. After completing the business, the Deputy Chairman adjourned the Upper House for the day. Earlier in the day, the Upper House witnessed repeated disruptions over several issues, including alleged police action during students' protest